0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए
1: यहां हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है यहां जितने भी लोग हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग करते ये हैं कि हम चाहते हैं महाराज जी हमें आप दो तो हमारी इच्छा का दो हमें आपने जो करना है वो हमारी इच्छाओं का प्रति करो हम जो करें अपने ऐसे हम जो सोच लें वही हो जाए अगर इतना ऐसा आपको करना है तो जो सोचो वो हो जाए तो फिर तो आपको भगवान से जुड़ना होगा क्योंकि भगवान जो सोचते हैं वो हो जाता है तो जब आप भगवान से जुड़ेंगे प्रभु से प्रभ अविनाशी भगवान कौन है प्रभ अविनाशी प्रभ अविनाशी से जब जुड़ेंगे तो ये शक्ति आपको प्रभ अविनाशी दे देगा मुफ्त में जो आप सोचो करोगे वो हो जाया करेगा हम ऐसे ही हैं त्रिलोचन दास ऐसा ही है मैं जो सोचता हूं ना हो जाता है इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं ये सच बोल रहा हूं मैं जो सोचता हूं कि मुझे मैंने कभी जिंदगी में कुछ भी सोचा हुआ ये चाहिए हो गया मिल गया वो भी बहुत अच्छे हैं वो बहुत बढ़िया हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं होता प्रभु से बड़ा कोई नहीं होता गुरु से बड़ा कोई नहीं होता अब भगवान जी और प्रभु अविनाशी करते क्या है अब अथॉरिटी तो मुझे दे दी कि जो सोचेगा हो जाएगा और ये भी अथॉरिटी दे दी अब तू सोचेगा भी नहीं अब इतनी ताकत लेके तू आराम से बैठा रहेगा ये भी प्रभु का काम है इसलिए जीत किसकी है जो तुझको मंजूर होगा प्रभु वही होगा जब छोटे हुआ करते थे तो बोले भगवान मिलेगा तो हम क्या मांगेंगे हम गुड़िया मांगेंगे पतंगे मांगेंगे सोच अच्छी थी गुड़ियों से खुश हो जाते थे हम लोग गुड़ियां वो जो उड़ती हैं वो हम पंजाबी में गुड़ियां कहते हैं यहां वो पतंग कहते हैं बटाला में हमारे गुड़ियां पता नहीं गुड़ियां हिंदी में गुड़िया वो होती है वो जो क्या कहते हैं डॉल हाँ हम लोग जब छोटे होते थे छोटी छोटी सी डिमांड्स होती थी छोटी छोटी सी इच्छाएं होती थी और वो इच्छाएं पूरी हो जाती थी अब हम बड़े हो गए हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो गई अच्छा मैं रहता इंसान की तरह हूं कोई ऐसा नहीं है मुझे और मैंने कभी मांगा नहीं अंदर से आपको सच बताता हूं आज महाराज जी साक्षात मेरे साथ बैठे हैं आप बैठे हो प्रभु की मौजूदगी है कभी मन में सोचा ही नहीं कि ये हो जाए प्रभु अपनी मेहनत करता हूं कर्म करता हूं अपनी मेहनत और कर्म से जो कुछ मुझे मिल जाए बहुत अच्छा है और अगर मुझे ना भी मिले तब भी महाराज जी ने मुझे इतना सिदक दे रखा है संतोष मैं अपने आप को टेस्ट करता रहता हूं टेस्ट टेस्ट मतलब कि अपने आप को देखता रहता हूं कि ये तेरे को नहीं मिला अब बता तेरे मूड खराब हुए कि ठीक हुए मेरा मूड फिर ठीक रहता है खुश रहता है उस वक्त मुझे ये अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करनी कि मेरे पास वो ताकत है जी जो मैं सोच लूंगा वो हो जाएगा इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं अपने आप आने दो जो आ रहा है नहीं आ पाया तब भी खुश हो जाओ आज नहीं आया कोई बात नहीं ये भी खुशी की बात है नहीं हुआ तब भी खुशी की बात आप लोग क्या करें आप अच्छा अच्छा सोचो अच्छा अच्छा दिन चढ़ जाए थिंक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है आप अगर अच्छे रहेंगे भी तो आपके आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं रहने देंगे ये भी याद रखिएगा जानबूझ के आपसे टकराएंगे खां आपकी गाड़ी

0: रही है, एकदम आएंगे। डॉक्टर साहब की गाड़ी बाहर वाले लोग ही ठोक जाते हैं, अपना तो बेचारे का कुछ चलता ही नहीं है उनका। बाद में फोन करते हैं, महाराज जी इंट्यूशन बहुत हो रही थी, कोई गड़बड़ होने वाली है। आ गड़बड़ होने वाली है तो गाड़ी मत चलाओ, अपनी बीवी को दे दो गाड़ी, तू चला, उससे सारी गड़बड़े भाग जाएंगी। बीवी का नाम आते ही अरे भगवान अपने बंदों को पहले बता देता है, इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, पहले बता, खबरदार कर देता है कुछ होने वाला है। हमें भी खबरदार कर देता है, मुझे तो पहले कर देता है, मुझे एकदम से पता लग जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है। त्रिलोचन दास कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं तो ठीक है, धैर्य धैर्य धैर्य, शांति शांति शांति शांति शांति। पर प्रॉब्लम क्या है, अब गड़बड़ हो भी गई, मान लो आप जा रहे हो और दूसरा आपके साथ आके टकरा रहा है, फिर क्या करेंगे आप, क्या करोगे? मतलब टकराने वाला, ये मतलब नहीं, मैं एक्सीडेंट की तरफ मत भाग जाना, टकराने वाला मतलब है कि आप तो चुपचाप बैठे हो और आप अभ्यास कर रहे हो गुरु का, भगवान का, मैं अच्छा सेवक बनूं, और आपको कोई आता है और आपके कानों में आम राम राम राम राम, आप तो गए, गुरु का नशा उतर गया है, भगवान का नशा उतार के चला गया, वो आपके अंदर कान में बात मार, पता नहीं क्या बात कर गया, आप तो हैं करते रहे उसका क्या करोगे? जिस दिन आपको समझ आ गया, ज्ञान हो गया कि यही सत्य है, उस दिन समझ लो बेड़ा पार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। यह महिला 3 दफा आई हमारे पास, पहली दफा हो गया काम, दूसरी दफा फिर आई, तीसरी दफा फिर आई कि ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा गुरु बहुत बड़ा है, कहाँ जाने देगा तूने, रो, ये रोती थी, और मुझे समझ पड़ गई कि ये डिपेंडेंट है। ये बहुत अच्छा तरीका तूने अपनाया पुत्र, गुरु के पास आके रो दो, भाई मर गया गुरुदेव मुझे बचा लो, तो गुरु बचा लेंगे, बात खत्म। अब गुरु के पास आके सोचते रहेंगे, हाँ जी मैंने कौन सी अरदास करनी थी, भूल ही गया, मेरे को अरदास बताओ क्या करनी है। 10 लोगों से पूछते आओगे, यार मैं तो क्या करूं अरदास, कोई मतलब ठीक है, इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर देख, ठीक, ये समर्पण नहीं है, ये शरणागत नहीं है, यहां सोच आती है, यहां सोच सोच के आप चलते हो, सोच सोच के कदम उठाते, सेवक नहीं बने। गुरु की कृपा इतनी होती है कि गुरु के सेवक उसे कहते हैं जो गुरु को सब कुछ अपना कहता है, प्रभु हाय मैं तेरा हो गया, बस बात खत्म, अब तू संभाल मुझे, अब तेरा काम है मुझे संभालना, तू संभाल, अब मेरे से मैं नहीं संभलता, मेरा मन मेरे से नहीं संभलता, मेरी सोच मेरे से नहीं संभलती। ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं, ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं। संगत किसे कहते हैं? जो उस पर टिकी हुई है, जिसका पूरा ध्यान अपने गुरु पर, अपनी शरण शरण अपने परमात्मा, बड़े केस हैं, बड़े बड़े बेअंत। मैं आपको क्या कहानियां सुनाऊं, आप बोलेंगे हैं, एक बच्ची मुझे अभी परसों अपना दुखड़ा, उसको बहुत दुख आए पीछे, तो अब सुख मुझे सुना रही थी अपना, तो मैंने उस बच्ची से कहा, पुत्र मैंने कहा, जब मैं तुझे कहता था, उसे 1 साल पहले मैंने कहा था, उसके जीवन पे एकदम से 1-1.5 साल पहले प्रकोप आ गया, प्रकोप आया तो वो अपनी जिद पे थी, नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, ऐसा कर लो, मैंने कहा टिक जाओ, ये भगवान कोई कार्य कर रहा है, कोई लेसन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी कोई कृपा करने वाला है, चुप हो जाओ और देखो क्या हो रहा है, शांत हो जाओ। समझ नहीं आई उसको, एक साल के बाद अब समझ आई और वही अपने शब्दों को वापस लेकर मेरे पास आई, आपने जो जो जो जो जो जो कहा था वो वैसा वैसा होता गया। बस मैंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं था पहले? बोले नहीं। कहते दुखों ने इतना सता दिया था, इतना तंग कर दिया था कि मेरा विश्वास रोज डोलता था। मैं कहता था महाराज जी मेरे साथ ऐसी बात करते हैं, ये तो ऐसी बातें सबके साथ ही करते होंगे कि कोई नहीं पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहते आप ये बात करते थे तो मैं कहता था कि मैं कहती थी कि महाराज जी मुझे कोई ऐसा जादू करें, कोई ऐसा करामात करें, कोई चमत्कार करें कि दुख एक मिनट में परे कर दें, तो कर क्यों नहीं रहे मेरे महाराज जी दुख परे। तो मैंने कहा पुत्र, मैं उसको बार बार कहता था, मैं कहा बच्चे तेरा लेसन है, सीखना पड़ेगा, समा है, ये सीखने के लिए सिखाने के लिए आया है, सीखो कुछ और इतनी खुशियां आने वाली हैं। देयर इज आपके पास अगर दुख आए ना और बहुत ज्यादा दुख आए तो ये समझ लीजिएगा देयर इज अ इनविटेशन टू सुख, एक आमंत्रण सुख को पहुंच चुका है, वो सुख आपके पास आने ही वाला है, बस इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। तो एक साल के बाद उस बच्ची ने आप इतनी खुशी की खुशी हो के एकदम सुख, उसके पास पैसा नहीं था, आज उसको महीने की इतना कृपा हो गई है कि वो कहते हैं मेरे को धन ही धन महाराज जी, मेरे घर में आदमी भी खुश वो भी खुश, मेरे घर में धन ही धन है महाराज जी, मेरा आदमी अब 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। मैंने कर ले बे 5, सिर्फ एक साल के अंतर अंतर आपने क्या कर दिया महाराज जी, हमें पता ही नहीं चला। ये सोचिए जरा, ये है जो गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं। आप अपनी जिंदगी को समझिए। मैं बचपन में बहुत छोटा हुआ करता था तो उसके घर में ही कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ परिवार वालों ने उसके साथ बहुत कुछ कर दिया, उनको बहुत कुछ हो गया। उस वक्त वो मुझे आके अब याद दिला रहा था, पीछे आया था मेरे पास 10-15 दिन पहले, मेरे को अंदर आ कहता महाराज जी जो मिला मुझे आपसे मिला, जो मैंने प्राप्त किया आपसे, आपने तो मुझे महाराज जी इतना बचाया, पल पल इतना बचाया महाराज जी, हम भी खोट बहुत है, इतना आज दे दिया कि हम आज महाराज जी इस योग्य नहीं है, इतना आपने हमारे को बख्श दिया, दे दिया, रहमत कर दी, कृपा कर दी। स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? आज आपकी जो जिंदगी है इतनी शांतिपूर्वक, ये तो आप भाग रहे थे आज से 1.5 साल पहले झोला टांग के, अब भागते हुए थे इधर उधर, आप टिक के बैठे हो, अपने आप पर कृपा हो रही है, आपकी इज्जत चेंज हो गई, आपके विचार चेंज हो गए, आपको शांति प्राप्त हो गई, पहले से ज्यादा शांत हो गए हो। ये सब कौन कर रहा है? गुरु ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? गुरु बताएगा, एक एक को बताएगा कि मैंने तेरे पे ये रहमत करी है? गुरु नहीं बताता, ये तो हमें खुद ही पता लगना चाहिए कि गुरु हम पर क्या कृपा कर रहा है। अगर गुरु जताएगा तो जता के तो फिर गुरु ने तो फिर वो फिर बात ना रही। गुरु थोड़ी बोलता है, ये तो गुरु के सेवक बोलते हैं कि प्रभु तेरी कृपा हो गई, तेरी कृपा हो गई, तूने कर दिया कमाल गुरुदेव, तूने कर दिया कमाल, आज बेड़ा पार कर दिया मेरा। सेवक को करना है। अब गुरु थोड़ी बोलेगा कि मैं आया तू तो ले तथा अस्तु किया, ले लिया मेरे से ये बातें नहीं अच्छी लगती। इनकी एक एक कृपा के ऋणी है हम, ऋणी ऋणी, कर्जा है सिर पर, एक एक पल का, एक एक पल का शुक्र है। जैसे नाम लिया प्रभु गुरु महाराज जी, हम इस दुख में हैं, कब उसने साथ नहीं दिया? सोचो जरा, क्या नहीं दिया? आप अपना हाल तो देखो, पुराने गुजरे जमाने में क्या हुआ करते थे, आज क्या है? बाबा जी का एक बहुत बड़ा काम अड़ा हुआ था, ये बड़े परेशान थे, तो मुझे 8 जनवरी पर बाबा जी मुझसे मांगते हैं, महाराज जी आज आपका जन्मदिन है, आज आप ना मत करिएगा, इनकार मत करिएगा, आज मुझे मालोमाल कर दीजिए। मैं सब बाबा जी के साथ बैठा था, उनको रब की बातें सुना रहा था। तो उस वक्त इन्होंने मुझसे उस वक्त मांगा, महाराज जी आप मुझे दे दीजिए जा जो जो मैं मांग रहा हूं। मैंने कहा बाबा जी दे दिया, जाओ आप पर कृपा हो गई, जो आपको चाहिए दे दिया, पूछो इनसे मिला कि नहीं मिला, बैठे हैं सामने, पूछ लो मिला कि नहीं मिला। वही सोच रहे थे बैठे बैठे, और वही सोच मैंने पकड़ ली कि बाबा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। कहते वही सोच रहा था मैं, ये बात के बारे में सोच रहा था, मैंने आपको सुना भी दी, क्योंकि ये बता नहीं सकते, सत्संग तो मैं कर रहा हूं। ये सोच रहे थे बैठे, इतना बड़ा कृपा है, इनके मुख से सुन लो, बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। अभी ये बाबा जी हैं, एक नया उपकार फिर चढ़ा दिया, और इनको पता है मेरा गुरु बहुत बड़ा है। मेरे से ऐसे करके रोते हुए इन्होंने बाबा जी ने मुझे कहा था, क्यों बाबा जी, गुरु है वो दयाल है। तभी मैंने कहा मैं सोचता नहीं हूं, और जो सोचता हूं वो हो जाता है। आपके लिए ही सोचता हूं, अगर मैं खुद के लिए सोच लूं कि मैं बहुत ये बन जाऊं, उसी वक्त महाराज जी मुझे बना देंगे, पर क्या होगा, बन के क्या होगा। मैं बोलूं जी मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ये भी हो जाएगा, पर क्या होगा उसके बाद, मेरा प्रभु से नाता टूट जाएगा, क्योंकि मैं अब पदार्थों में जी रहा हूं, पदार्थों की दुनिया में चला गया हूं, परमात्मा की दुनिया से भाग गया हूं और पदार्थों में जी रहा हूं, इसलिए मैं सोचता ही कुछ नहीं हूं। जैसा प्रभु तुम्हें भावे वैसा होवे, जैसा तुम चाहो वही हो।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: द वर्ल्ड इज हियर।
5: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम से, मैं हूं गगन आपके साथ। आज क्या है, आज हमारे साथ कौन खास जुड़ रहे हैं, कौन मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता जगत से, आप पत्रकार हैं, अतुल शाह जी आपका नाम है, और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे इनके अनुभव के बारे में, इनकी इस यात्रा के बारे में, और आज के समय में पत्रकारिता का क्या रूप है और आप क्या सोचते हैं आज के पत्रकारों के बारे में। ये सारी बातें होने वाली हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कि अतुल शाह जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बहुत कुछ जानेंगे। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिक और ब्रेक का, सो आप कहीं जाएगा मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं नाचीज हर दिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पहले लिंक में हमने आपको बातें बताई कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार पुनः बता देता हूं, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि पत्रकारिता जगत में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। 20 से 25 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिए हैं। आपका नाम है अतुल शाह जी, और कहते हैं, इनका इस्तकबाल करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि चार स्तंभ की बात होती है। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है
1: न्यायपालिका,
0: न्यायपालिका और चौथी है पत्रकारिता। ये छोटी सी आवाज आपने सुनी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल शाह जी। तो शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत ही रोचक यात्रा होगी।
0: बेशक बेशक सर, हमें बड़ी खुशी है आपसे बात करके खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चाएं होने वाली हैं, आपके अनुभव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, जब मैं अनुभव का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, तो पत्रकारिता जगत में आपने 25 साल, जैसे आपने हमें बताया, 25 साल का जो अनुभव है वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो ये जो यात्रा अब तक रही है, कैसी रही आपकी?
2: बहुत ही शानदार यात्रा रही है। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैंने 1997 से दैनिक जागरण से अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया, जो अनवरत 2021 तक जारी रहा।
0: सिर्फ एक संस्थान के साथ?
2: सिर्फ एक संस्थान के साथ जुड़ा रहा। और इसका एक खास कारण भी है कि बनारस में जो हमारे मुख्य संपादक हैं और दैनिक जागरण के निदेशक भी रहे हैं, वीरेंद्र कुमार जी, तो जब मैं अपने संस्थान में ब्यूरो चीफ था, मुझे किसी एक जगह पर एक पत्रकार की नियुक्ति करनी थी। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो मुझे सबसे ज्यादा अपील कर रही थी, और उन सज्जन ने 7-8 जगह काम किया था 10 सालों में। मैं बहुत ही उत्साहित होकर जब अपने निदेशक जी के पास गया और उनको बताया कि ये एप्लीकेशन आई है, किंतु मैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ और इन्हें मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने उस एप्लीकेशन को देखा और मुस्कुराए, बोले जब ये 7 जगह नहीं टिका तो तुम्हारे पास क्या टिकेगा।
0: जी।
2: तो मुझे समझ में आया, टिकना भी जरूरी है। स्थायित्व से ही आपको जो है पहचान मिलती है। और निसंदेह हिंदी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण नंबर 1 रहा है, तो उस मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि मैं किसी नंबर 2 अखबार में जाऊं। और मेरी बहुत ही मनमोहक यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी,
2: और समाज को जानने को मिला है, और मैं बहुत खुशनसीब लोगों में से हूँ जो मैं कुछ लोगों के लिए कर भी पाया।
0: क्या बात है। सो ये एक छोटा सा परिचय हमारे जो खास मेहमान है अतुल शाह जी, जो कि पत्रकारिता जगत में 25 साल का अनुभव है, और सबसे खास बात यह है कि एक संस्थान को ही इन्होंने 25 साल दिए हैं, और संस्थान ने भी इनको बहुत कुछ दिया है। ये हम कह पा रहे हैं, इसलिए कह पा रहे हैं कि स्थायित्व, यानी कि एक जगह लगकर जब आप काम करते हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आपका एक नाम मार्केट में जाता है और लोग आपको जानते हैं, और जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको हाथों हाथ दिया जाता है, आपका स्वागत इस्तकबाल किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और जानेंगे हमारे खास मेहमान जो कि आज जर्नलिस्ट हैं अतुल शाह जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है, जर्नलिस्ट हैं आप हैं अतुल शाह जी, दैनिक जागरण के साथ आप 25 साल का आपका एसोसिएशन रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आप स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, यानी कि फ्रीलांसर काम करते हैं। और फ्रीलांस जब काम करते

0: हैं तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, सम्मान कितना मिलता है, और फ्रीलांस की जब बात आती है और जो एक व्यक्ति एक संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहा है तो उसमें क्या अंतर है। सर मेरा सवाल आपसे ये है,
1: जब आप किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारी प्रतिबद्धताएं भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं, और आपको उनकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जब मैं फ्रीलांस करता हूं तो फ्री लगा ही हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं।
0: क्या बात
1: मेरी सोच, मेरी लेखनी, मेरी कलम सब स्वतंत्र है, मैं किसी भी विषय पर लिख सकता हूं। मुझे अब ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे लिखने से कहीं मेरे संस्थान को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और आप जानते हैं कि यह व्यावसायिक दौर है, सभी संस्थान को अपने व्यावसायिक हितों को भी साधना पड़ता है, लेकिन अब मेरे साथ वो सारी लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। और फिर भी जब आप किसी संस्थान से जुड़े होते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और आपको बताना नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं। चूंकि अब हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इतना अनुभव है और छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब मेरी खुद की पहचान है।
0: क्या बहुत खुश।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काम किए हुए लोग और मेरे अंडर में काम किए हुए लोग आज सभी वहां के जितने भी नामी अखबार हैं उसके ब्यूरो चीफ हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है, या मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे साथ मेरे अंडर में काम किए लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं,
0: पहुंचे हुए। असर आपने तो अपना अनुभव साझा किया। असर हम समाज में ये भी देखते हैं कि लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, लेकिन उनकी पास्ट में कोई पहचान रही नहीं है जिसकी वजह से उनको आगे तवज्जो नहीं मिल पाती, या यूं कहें कि वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूं आपसे बात कर कि सबसे पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपना संस्थान खोलना चाहते हैं, तब जाकर आपकी मार्केट वैल्यू होती है। क्या कहना चाहेंगे?
1: निश्चित, लेकिन प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है, तो भले थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपको आपकी पहचान अवश्य मिलेगी। आप संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो ये काम आपको थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बैनर मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और आप अपने आप करते हैं तो थोड़ा आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, बातों बातों में एक बात निकल कर यही सामने आई है कि टैलेंट यानी कि क्वालिटीज, प्रतिभा अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पर दिक्कत परेशानी आपके सामने जरूर आएंगी, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। वो प्रतिभा, वो क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर, ये हम जानेंगे जरूर सर से, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दैनिक जागरण में 25 साल तक जुड़े रहे, आप हैं अतुल शाह जी, बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। तो ये बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है अतुल शाह जी, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और दैनिक जागरण के साथ आपका एसोसिएशन 25 सालों का रहा है। तो इतने गुणीजन जब लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था, चूंकि सर ने जब बात रखी थी कि प्रतिभा क्वालिटी गुणों के बारे में बात हो रही थी, तो सर मैं यही जानना चाहता हूं कि एक अच्छे पत्रकार के अंदर, सच्चे अच्छे पत्रकार के अंदर वो कौन कौन सी प्रतिभाएं होनी चाहिए, वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते।
1: सबसे पहले सब तो ईमानदारी आता है, जो पत्रकार में नहीं समाज के हर विधा हर अंग में होना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार हों और ईमानदारी से काम करें, आईने की तरह एकदम स्पष्ट हों। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर के लिए चिकित्सक बहुत जरूरी होता है, उस तरह से समाज के लिए पत्रकार की भूमिका होती है। लेकिन हम धीरे धीरे मिशन से प्रोफेशन के उस दौर में पहुंच गए हैं कि जैसे आज आपके पाठक को क्या चाहिए आप इस पे फोकस करते हैं
0: जी।
1: आप ये फोकस नहीं करते कि उसे क्या चाहिए होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर से मरीज उम्मीद करता है कि उसे मीठी दवा दी जाए
0: जी।
1: लेकिन अगर डॉक्टर जानता है कि इसे ऑपरेशन की जरूरत है, इसे इंजेक्शन की जरूरत है, इसे कड़वी दवा की जरूरत है, तो वो देता है। तो आजकल हमको पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि लोग पाठकों की रुचि के अनुसार चीजें उनको परोस रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आज समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तभी समाज का विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम समाज हित में क्या कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए।
0: बहुत खूब सर, आपने जो बात कही वाकई बिल्कुल खरी बात है और सच बात है कि ईमानदार होना चाहिए। और किसी भी पेशे में अगर हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जो खुशबू है वो फिजाओं में चारों तरफ फैलती ही फैलती है। आज के समय में हम देखें, पत्रकारिता ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ईमानदारी के साथ काम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियां आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं कहानियां बन रही होती हैं। क्योंकि पत्रकारिता का विषय है और आप एक पत्रकार हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेड न्यूज की बात होती है, अगर हमें कुछ रुपया पैसा मिल गया तो हम खबर दबा देंगे, नहीं मिला तो शायद हम उस खबर को उछाल देंगे। ये मैं छोटे से लेकर बड़े बड़े संस्थानों की बात कर रहा हूं, यहां हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही आप इस बात को यहां जिक्र करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि इसके साथ ही मैं अगर दूसरी बात पर भी आता हूं कि अभी हम जो फ्रीलांस की बात कर रहे थे सर, चूंकि आपके पास तो अनुभव है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको वो बारीकियां पता है, वो एथिक्स पता है, वो मान मर्यादा पता है। मैं एक 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई साहब की इनकम हो रही है, भाई साहब अगर किसी का रिपोर्टिंग कर आ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं तो कुछ रुपए पैसे आ जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पत्रकारिता के क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास जानकारी का अभाव है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: मैंने इससे पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम मिशन से प्रोफेशन के दौर में पहुंच चुके हैं।
0: ठीक है,
1: जब गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महापुरुषों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो उनका एक जरूर सोच रही थी और जरूर एक उद्देश्य रहा था कि हमें पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं
0: जी।
1: और सिर्फ उस समय के उद्देश्य था कि हमको समाज के हितों के लिए काम करना है। आज ये सारा बिजनेस ग्लैमराइज हो चुका है, उसमें बाजारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका है
0: जी।
1: आज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें सिर्फ
0: सेवा करनी है, ऐसा
1: सेवा
0: कुछ नहीं।
1: करनी है उन्हें सिर्फ ऐश्वर्य और उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे इसीलिए आज पत्रकार सम्मान खोते जा रहे हैं,
0: खोते जा रहे।
1: 15-20 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों के लिए इतना सम्मान होता था कि कोई भी आयोजन या कोई भी सभा या कोई भी कार्यक्रम तब तक शुरू नहीं होता था जब तक पत्रकार नहीं पहुंच जाते थे।
0: सही कहा।
1: और कहीं भी अगर किसी भी यूनियन और मालिकों में बात हो रही है तो वो यूनियन चाहती थी कि पहले पत्रकार हों, मजदूर और मालिक में बात हो रही है तो लोग चाहते थे कि नहीं पत्रकारों की उपस्थिति में हो। और आज उल्टा हो गया है, पत्रकारों को देखते ही लोग मारो मारो भगाओ भगाओ
0: जी जी
1: चिल्लाओ चिल्लाओ का दौर आ गया है कि ये जो है
0: जिम्मेदार हम सभी
1: हैं। इसके जिम्मेदार पूंजीवाद और बाजारवाद है। और जब से पत्रकारिता जो है संस्थागत हो गई है और इसको व्यवसाय बना लिया गया है और ये सेवी में रजिस्टर्ड होने लग गई है, तब से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। और जल्दी से इसका इलाज नहीं किया गया तो वो हम अपने सम्मान को खो देंगे जो हमें हमारे लोगों ने दिलाया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जल्दी से अगर इसका इलाज नहीं किया गया या ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो पत्रकारिता क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और यही होगा आगे चलकर कि पत्रकार को शायद कोई तवज्जो ना दे जो तवज्जो पहले मिला करती थी, कोई उनसे बात ना करे क्योंकि उनको पता है कि उल्टी सीधी खबरें छप जाती हैं, जो खबरें छपनी चाहिए वो खबरें नहीं दिखाते लोग। और जब चैनलों की हम बात करते हैं तो वहां पर मार धाड़ हो रही होती है, चीख चिल्ला के लोग बात कर रहे होते हैं, एंकर भी वही चीख चिल्ला के बात कर रहे होते हैं। और जब कुछ और घटनाएं सामने निकल कर आती है, एक अच्छी भूमिका होती है पत्रकार की एक एंकर की, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, न कि आपस में वो मतभेद पैदा करे या मनभेद हो। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें हो रही हैं, क्योंकि पत्रकार का यही काम है कि वो बिंदास बात रखे, जमाने के सामने सच के साथ वो बातें हमारे सामने आए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शाह जी, जो कि 25 साल का अनुभव रहा है, दैनिक जागरण से आपका एसोसिएशन रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है कि पत्रकार के अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज के समय में जो पत्रकारिता है वो कितनी बदल गई, ये सारी बातें हम सर से जान रहे हैं। सब ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक पत्रकार के अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज में एक जागरूकता ला सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है पत्रकारिता का, और जिसकी एक गलती की वजह से दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं, सरकार को हम यहाँ लाना नहीं भूलेंगे, कि सरकार ने शिकंजा भी कसा है। जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उस संबंध में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहेंगे?
1: आजादी की अभिव्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं कि अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है, जबकि इसकी सीमाएं बहुत पहले से निर्धारित है। और बचपन में मैंने किसी की इंग्लिश लेखक की कविता पढ़ी थी और मुझे

0: एग्जैक्ट उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि आपकी आजादी का मतलब है कि आप अपनी छड़ी घुमाएं लेकिन वो किसी की नाक से न टकराए।
1: क्या बात है।
0: तो आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति आप उतनी ही स्वतंत्र हैं कि जिससे दूसरा कोई हर्ट न हो, आहत न हो और किसी का नुकसान न होता हो।
1: क्या बात, बहुत
0: खूब। और जो वर्तमान दौर में अभी पत्रकार बने हैं या आगे बनेंगे, उनके लिए मेरा एक यही संदेश है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू करने जाते हैं या रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो आपको पहले उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो आप किस क्षेत्र, वो किस क्षेत्र में है उसके बारे में अगर आप जान के जाएंगे तो आप उससे बेहतर सवाल कर सकेंगे और वो जो बता रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और जैसे हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, उसी तरह से पत्रकार को भी जिसका इंटरव्यू लेने जा रहा है उससे उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए,
0: चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सामाजिक हो या वो राजनीति से संबंधित हो।
1: तभी बात करने में मजा आएगा,
0: तभी मजा आएगा। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार हुआ था तो हमारे यहाँ उस समय के केंद्रीय कारागार मंत्री का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ था, हम भी उत्साहित थे और वो मंत्री जी भी नए नए बने थे, वो भी बहुत उत्साहित थे। मजेदार बातें हो रही थी। मैंने पूछा, मंत्री जी जब आपसे, आप कारागार मंत्री बने हैं तो आपने अपने कारागार के लिए क्या क्या किया है? वो बहुत उत्साहित थे, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेमेंडस चेंज किए हैं, हमने अब कैदियों की सुविधा के लिए टीवी लगवा दिया है, उनको खाना अच्छा मिलता है, उनको दाल मिलती है, उनको रोटी मिलती है, उनको घी मिलती है, उनको मैगजीन मिलती है, हमने कूलर की व्यवस्था भी की है और हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, हफ्ते में एक दिन वो टीवी भी देख सकते हैं। मैंने कहा, मंत्री जी आपने तो इतना अच्छा काम किया है और हम जेल के अंदर इतनी सुविधाएं हैं और बाहर तो लोग बिना खाए मर रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा कि हम छोटा सा अपराध करें और जेल चले जाएं। मंत्री जी घबरा गए, बोले भैया फंसाओ मत, मैं नया नया मंत्री बना हूं।
1: उसे एक हासिल तो जरूर पैदा हो गया। क्योंकि आपने बाहर से ज्यादा सुख सुविधाएं अंदर दे रखी हैं।
0: तो भाई आप छोटा सा क्राइम करके अंदर जाएंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगे जो बाहर आपको उपलब्ध नहीं है।
1: तो इस बात का रोचक यही है कि सर की कहा भी जाता है, जो आपने एक वाक्य का यहाँ जिक्र किया, अक्सर हमने सुना भी है कि तोल मोल की बोलना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो इस बात को अगर हम सब ध्यान रखेंगे कि तोल मोल कर बोलेंगे तो हमारी शब्दों की गरिमा बनी रहेगी, माहौल अच्छा बना रहेगा और पत्रकारिता की जो एक भूमिका है, या यूं कहें कि पत्रकार की जो एक भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके कंधों के ऊपर, सच्ची अच्छी बात रखे, अगर कोई बात कड़वी भी है तो बहुत सदे हुए शब्दों में रखे ताकि एक माहौल अच्छा बनकर रहे। तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान हैं अतुल शाह जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल, मैं हूं गगन आपके साथ। आज हम जो बात कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है, और पहले के समय के बारे में बातें की, आज के समय के बारे में बातें की। पहले का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 25 सालों का अनुभव है। हमारे जो खास मेहमान है, आप है अतुल शाह जी। 25 साल का जब अनुभव है, वाकई बहुत बड़ा अनुभव है। तो उस समय क्या माहौल था, आज के समय में क्या माहौल है, और हमें किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर, जब किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आपके साहबजादे शादा विश्वविद्यालय के बास्कॉम डिपार्टमेंट में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ फादर, आप एक पिता होने के नाते उनको क्या शिक्षा देते हैं, किन किन बारीकियों को आप बताते हैं, समझाते हैं?
1: ये मेरे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि मेरे पुत्र जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आज मुझे जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला है। और उनकी रुचि थी पत्रकारिता में
0: जी,
1: है ना। मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मैंने उसके इस आने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि वह स्वतः प्रेरित थे। उनकी मैं जब लिखने की शैली को देखता था तो मुझे लगता था कि उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। जबकि आज अधिकांश अभिभावकों का होता है कि वो उनका बेटा डॉक्टर बने
0: जी,
1: इंजीनियर बने या किसी और भी तरह जाए। लेकिन हम आज दौर बदल चुका है, हम अपने बच्चों को अपना करियर चुनने की पूरी आजादी दे सकते हैं और हमें देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद करूंगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है तो सारी खूबियां, सारी विशेषताएं उसके अंदर स्वतः आ जाएंगी। और उसे अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और सिर्फ पैसे के लिए अगर वो काम करना चाहेंगे तो उससे बेहतर है कि वो ना करें।
0: क्या बात, क्या बात है।
1: अगर
0: क्या
1: हम
0: बात?
1: समाज को कुछ दे सकते हैं
0: हाँ।
1: तो यही हमारी उपलब्धि होगी। और मैं चाहता हूं कि मैं 25 साल के अनुभव को उनको जरूर जो है दूंगा, कि वो जो है आगे बढ़ें और जरूर समाज को एक नई दिशा दें।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लिसनर्स, मैं समझता हूँ कि यही संदेश जो अपने पुत्र को वो दे रहे हैं, हमारे खास मेहमान, हर एक बच्चे के लिए ये एक छोटा सा संदेश है सर की तरफ से, कि इन बातों को भी अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, अमल में लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। और असल मायने में, क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो ये काम अच्छा करेंगे कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर रखें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इन बातों को सीखिए, समझिए और अमल में लेकर आइए, जिन बातों का जिक्र सर ने यहां किया है। तो सर, यहां पर वक्त हो चुका है आपसे अनुमति ले लेने का, और ये जो चर्चा रही वाकई बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला है आपसे। और बस यही कहूंगा कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप ऐसे ही अपने ज्ञान से हम सबको यूं ही रोशन करते रहे।
1: धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा लगा। और हमने पत्रकारिता में उस समय से आज तक का सफर तय किया है जब हमको किसी अपनी न्यूज को अपने सेंटर पे भेजने में 2 दिन लगते थे और समाचार 3 दिन बाद प्रकाशित होते थे। फिर भी उनकी उस समय अच्छी भूमिका होती थी क्योंकि कुछ अच्छा लेसन मिलता था। आज जल्दी जल्दी का दौर है, त्वरित का दौर है, और ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, और उसी कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही
0: हैं। क्या
1: तो हमें जल्दी के चक्कर में जो है फायदे के चक्कर में कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए, और समाज हित सर्वोपरि।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत। आपके साथ ये चर्चा बहुत अच्छी रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिसनर्स इस चर्चा से लाभ जरूर उठाएंगे, और 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर कि ये विशेष वार्ता आपको कैसी लगी। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस वार्ता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। खासकर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या इस फील्ड में भी नहीं है लेकिन इन बातों से तो जरूर आप सीख लेंगे ही कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी साथ काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। जाते जाते सर, कोई एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, गाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, सुनना सुनाना चाहते हैं, तो एक गाना हम आपके पसंद का अपने लिसनर्स को जरूर सुनाना चाहेंगे।
1: मैं चाहूंगा कि अजीब दास्तां है ये।
0: क्या बात है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। तो चलिए, वक्त है यहां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, अनुमति ले लेने का। ये चर्चा कैसी रही बताइएगा जरूर। तो सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: ਕੱਟਿਆ।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है।

0: इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
1: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
0: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: खबर। कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल

0: सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
0: हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा जो अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सुख बताए गए हैं, लेकिन जब बात हो आपके स्माइल की तो जाहिर सी बात है कि इस मुस्कान के पीछे राज क्या है। इस राज को हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुस्कान को मेंटेन करके रखा जाए। जाहिर सी बात है कि इस संबंध में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो एक कम्युनिटी कनेक्ट के तहत हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक रابطہ हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे साथ दो खूबसूरत मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज से डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी शर्मा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
0: मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया या नहीं, क्योंकि मेरे सामने बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आया। चलिए आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे जो शख्सियत है, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और आप भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सुखदीप सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ये आपका डिपार्टमेंट है। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: आप लोग कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए।
3: मजे में,
0: वेरी गुड। और मैम आप कैसे हैं?
2: खुश।
0: वेरी गुड, मजे में रहिए, खुश रहिए। और ईश्वर से ही मेरी परवरदिगार से कामना है कि हम सब खुश रहें। कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सोच है। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना समझना चाहते हैं, जिस विषय के साथ आज रेडियो पर आप आई हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने दांतों का हम ख्याल रखें, कैसे अपनी मुस्कान को हम बरकरार रखें। तो जो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि मुस्कान क्यों हमारे लिए, हम सबके लिए जरूरी है?
2: मुस्कान जरूरी है क्योंकि वो हमारी खूबसूरती बढ़ाती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मुस्कान हमारी पर्सनालिटी में बढ़ावा देती है, हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है स्माइल करना
0: जी,
2: है ना। आप मुस्कुराइए तब आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं
0: जी।
2: सो मुस्कान हमारे सिर्फ आत्मविश्वास के लिए ही नहीं जरूरी है, मुस्कान हमारे रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है, हमारी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है। और मुस्कान एक तरीका है ये जताने का कि हम कितने आभारी हैं, खुश हैं जो फॉर द लाइफ दैट वी हैव।
0: यस यस। तो सर मैम ने जो कहा इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे?
3: मुस्कान स्माइल जो है कि लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन जो इंसान करता है, इंसान जो हम है, हम सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक जानवर कहते हैं इसको। तो हमारी जो भाषाएं हैं बहुत सारी हैं, जैसे मुंह से बोलते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, खपत करनी पड़ती है। लेकिन स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी पे स्माइल करिए, आपको अपने आप फ्री में तुरंत जवाब आएगा स्माइल से, स्माइल का जवाब। तो ये हमारे को भगवान ने, एक नेचर ने बहुत बड़ा एक
0: तोहफा
3: स्ट्रेंथ दी है कि आप किसी पे स्माइल करें वो स्माइल करेगा। तो लेकिन स्माइल के पीछे बहुत मेहनत लगती है, डेंटिस्ट को बनाने के लिए स्माइल। अच्छा। एक, लेकिन भगवान ने हमको फ्री में दिया है, आपको सिर्फ बस अपने लिप्स को हिलाना है और दांत दिखाने हैं, लेकिन ये भी कई बार लोग नहीं कर पाते।
0: आपने जो बात एक छेड़ दी, यहाँ पर भी एक सवाल हमारे सामने रख ही दिया है लिसनर्स के सामने, कि जो डेंटिस्ट होता है उसको बड़ी मेहनत लगती है कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है किसी पेशेंट के साथ, वो जो मेहनत लगती है उसके बारे में आप प्लीज बताइए कि किस मेहनत की बात आप कर रहे हैं।
3: सो इस मेहनत को हम एकदम जीरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक डेंटिस्ट और एक मरीज पेशेंट। अब अगर कोई भी, अब मरीज, हर एक इंसान मरीज नहीं है, इंसान मरीज बनता है। कैसे बनता है? वो खुद बनाता है अपने आप को। अगर हर एक इंसान बचपन से, जब से पैदा हुआ है, बच्चे की उम्र से, एक साल की उम्र से, जब से उसका पहला दांत निकलता है, अगर वो एक डेंटिस्ट के पास जाए, अपना रूटीन चेकअप कराता रहे, तो वो कभी मरीज नहीं बनेगा जिंदगी में, और डेंटिस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि आम तौर पे देखा गया है एक्सपीरियंस में कि लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें दर्द होता है या कोई दिखने में परेशानी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, अफसोस। सो अगर रहते वक्त में लोग आ जाएं, चेक कराते रहें, तो ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे से मेरा मतलब ये था कि यस, जब तकलीफ

0: जाती है, फिर इसे रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें फिर इलाज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह।
1: जी डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे, कुछ एक रिसर्च के जरिए हमने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओरल हाइजीन एंड अपीयरेंस ऑफ स्माइल, हाउ डज इट इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। मैं अपने श्रोताओं को इसका रूपांतरण बताना चाहूंगा। दोस्तों, मौखिक स्वच्छता और मुस्कान के बीच क्या संबंध है और ये संचार को कैसे प्रभावित करती है, तो इसी संबंध में डॉक्टर से जानते हैं इसका आंसर। जी
2: थैंक यू। तो मेरी नजर से ओरल हाइजीन और मुस्कान में वही संबंध है जो जय और वीरू में है।
1: क्या बात है बहुत खूबसूरत।
2: देखिए, अगर आपके दांत गंदे हैं,
1: जी,
2: पीले हैं, मसूड़ों में सूजन है, मुंह में बदबू है, तो आप चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाएंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बात करने का, मुस्कुराने का। और जैसे अभी सर ने बताया कि मुस्कुराहट जरूरी है आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ ओरल हाइजीन खराब है वहाँ मुस्कुराहट में कॉम्प्रोमाइज है, और जहाँ मुस्कुराहट नहीं है वहाँ आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बात में अगर आपको लगता है कि डॉक्टर पल्लवी की बात को हम और आगे लेकर जा सकते हैं, मेरा सोचना मानना ये है, कुछ और अगर आप कहना चाहें।
0: देखिए, इंसान की जो सेहत है, ऐसा माना जाता है, हमारी किताबों में लिखा है कि जो मुंह है इंसान का, जो ओरल कैविटी है, माउथ है, ये गेटवे टू द बॉडी है, ये द्वार है हमारे पूरे शरीर के अंदर की सीक्रेट्स का, अंदर की कितनी आपकी हेल्थ ठीक है जानने का। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले मुंह में दिखाई देती हैं, फिर बॉडी में आपको पता लगता है किसी को कि अंदर बीमारी भी थी। लेकिन अफसोस की बात कि ज़्यादातर लोग अपने मुंह को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं या जो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही भगवान ने स्ट्रांग बनाए हैं, स्टर्डी है, वो रेजिलियंट है, वो बहुत देर तक अब्यूज सह लेते हैं, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होते हैं फिर ऑफकोर्स फिर लोग जाते हैं ठीक कराने, और लेकिन ज्यादातर वो एक लंबी प्रोसेस है, फिर चाहे वो छोटी सी कैविटी हो, चाहे वो जैसे मैडम ने बताया मसूड़ों की दिक्कत हो, कोई सर्जरी करनी हो, उसमें फिर वक्त लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, और फिर जो लोगों का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी भी है।
1: तो क्या महंगी है या नहीं?
0: देखिए, महंगी जो है ये लफ्ज बहुत ही रिलेटिव है। जो चीज मुझे महंगी लगती है आपको शायद सस्ती लगती हो, और उसमें बहुत सारे इसके बहुत सारे रंग है इसके। महंगा सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होता है, वैल्यू की वजह से भी होता है। अब कोई चीज मेरे लिए, अगर मेरा ये पेन है, अगर ये टूट जाए अभी इसलिए मैं दवाई लगता हूँ, इसकी एक्चुअल MRP तो 10 रुपए है, पर वैल्यू मेरे लिए इसकी हजारों में है अगर ना मिले टाइम पे मेरे। तो इसलिए सेहत जो है, जैसे मैंने कहा, ये फ्री है, मुफ्त है, हर एक के पास भगवान ने बांट रखी है, पर उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो डेंटिस्ट्री महंगी कभी कभी पैसों की वजह से हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हमारे मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं और ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। ऑफकोर्स आजकल तो खैर इंडिया में सब कुछ बनता है, सब कुछ से मेरा मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, पर कुछ चीज़ें अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस वजह से महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक लेकिन कहना चाहूँगा, फीस जो है वो एक्सपीरियंस, स्किल और जगह की वजह से होती है,
1: जी,
0: सिर्फ मटेरियल से नहीं होती है।
1: सर, आपने जो जिस तरीके से एक परिभाषा दी है आपने, डॉक्टर पल्लवी ने बहुत खूबसूरत उसको यूं कहें कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया कि किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रखें, किस तरीके से मुस्कान का ख्याल रखें, और जब आपकी मुस्कान रहती है तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपकी बात को यहां कहना चाहूंगा, जो हमारे साथ लिसनर्स जुड़ रहे हैं, कि आप लोगों का हमारा डेंटल स्कूल है, यानी कि बहुत रियायत दर पर यहां ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। सो लिसनर्स, आप यहां आ सकते हैं, और खास बात यह है कि सर और मैडम की जो टीम है लोगों के बीच में भी जाती है, और कभी कभी वहां से लोगों को लेकर भी आती है, और बहुत सुविधाजनक यहां से ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, इस बात का जो सिलसिला है लगातार जारी है, तो आप मेरे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। तो कोई आप दोनों की पसंद का एक गाना, या कोई पहले आप बताना चाहें, पहले आप चल रहा है तो ये तो सर आपको मौका दे रहा है, कहते ना लेडीज फर्स्ट मैम, तो प्लीज आपके दिमाग में कुछ जहन में आ रहा होगा ना।
0: बहुत पुराना गाना है, आई थिंक मुकेश का था, मुकेश जी का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
1: क्या बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो यही खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए कहीं जाएगा। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, मेरे यानी गगन के साथ, और दो खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो की बातें हो रही है आपकी ओरल हाइजीन के विषय में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

हजारों दी के हम अमीर है। मान अपनी जेब से फकीर।

0: इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम राब्ता। और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं एक विषय के साथ हाजिर हुए, मेरे साथ दो एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जी और आप हैं डॉक्टर सुखदीप सिंह जी। अपने एक बहुत बड़े फील्ड के साथ आते हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो गाना सुनाया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाने का आपने चुनाव किया, हमारे भी चेहरे पर स्माइल आ गई और एक छोटी सी एनर्जी आ गई। तो सर, सबसे पहले मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ ब्रेक के आने के बाद कि समटाइम्स चिल्ड्रंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स, हाउ डू दे इम्पैक्ट ओरल हेल्थ एंड कम्युनिकेशन। सो लिसनर्स, मैं आपको हिंदी में भी बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये कि इसका जो अनुवाद है वो हमने किया है, आपके लिए आसान हो जाए कि कभी कभी बच्चों की आदतें अलग अलग होती हैं, ये मौखिक स्वास्थ्य और संचार को कैसे प्रभावित करती हैं, ये मेरा सवाल है डॉक्टर सुखदीप सिंह जी से।
1: जी, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले हम एक्सपेंसिव की बात कर रहे थे, मुंह का और दांतों का ख्याल रखना बहुत ही आसान है और उसकी कीमत ना के बराबर है। हमें सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करना है एक नॉर्मल किसी भी टूथपेस्ट के साथ। हमें अगर सीख जाएं, और सीखना चाहिए एक्चुअली, हमें फ्लॉस करना चाहिए, दांतों के बीच की जो जगह होती है उसे हमें कभी साफ नहीं करते हैं। हमें दो बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, मुंह साफ रखना है, जितनी बार खाते हैं उतनी बार अगर हम ब्रश कर लें तो बहुत ही बढ़िया, हमें कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। इतना आसान है दांतों का ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। सो बच्चों में बहुत तरह की हैबिट्स हैं, जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं, जिनके नहीं हैं वो देखते रहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई अपनी उंगली में, अपने मुंह में उंगली डालता है, कोई अपनी उंगली चूसता है, कोई अपने नाखून खाता है, कोई बाल खाता है, कोई अपने लिप्स बाइट करता है, कोई जीभ को बाहर निकालता है, वगैरह वगैरह। सो बच्चे बड़े यूनिक होते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं, लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों का कई बार बैड इफेक्ट्स होते हैं, दे हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसता है 2.5-3 साल की उम्र के आगे जा करके, तो उसके जो ऊपर के दांत है, जो ऊपर का जो उसका जबाड़ा है, जो जॉ है, जो मैक्सिला कहते हैं हम, वो बाहर को आ जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और उसका फिर हमें इलाज करना पड़ता है। सो अगर किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके हों या पड़ोसियों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके बच्चे में कोई हैबिट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर गो टू योर नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या कम टू स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज। हमारे यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मुफ्त इलाज करते हैं और सब इस तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी आपको।
0: बहुत खूबसूरत, और इसीलिए कहा जाता है शारदा विश्वविद्यालय की जो टैग लाइन है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। हाँ, मेरा बहादुर, यानी कि मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करता हूँ कि तुम कहो मैं यहाँ हूँ। सर, ये मेरे साथ आ जाता है बहादुर। तो ये बहादुर होता है और सुबह मेरा लाइव प्रोग्राम जाता है जिसमें कि ये मेरे साथ संवाद करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, ये मुझे करेक्ट करता है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर का जो सवाल का जवाब मेरा सवाल था और जवाब सर का था, और उसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बात ये समझना चाहूंगा कि सर ने कहा कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक अच्छी आदत है, बच्चों में इस आदत को हमें डालना चाहिए। मैं यहाँ टाइम की बात करना चाहूंगा कि कितना टाइम ब्रश में लगाना चाहिए, एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है।
2: जी बिल्कुल, एक ठीक से ब्रश करने की प्रक्रिया करीब 2 मिनट लेती है।
0: दो मिनट
2: लेती है। कहते हैं अगर आप हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे तो वो पूरा सॉन्ग खत्म होना चाहिए, तब तक आपका ब्रश चलता रहना चाहिए। और ठीक से ब्रश करने का एक तरीका भी है, हम दांतों को बर्तनों की तरह नहीं घिसना है, है ना। आपको कोशिश करनी है कि अपने हाथ को गोल गोल घुमाएं, अपने ब्रश को थोड़ा गोल तरीके से घुमाएं, और ऊपर के मैक्सिला को और मैंडिबल को, ऊपर वाले जबड़ों को और नीचे वाले जबड़ों को अलग अलग ब्रश करें। मुंह को बंद करके नहीं रगड़ना है दांतों को, ऊपर वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है और नीचे वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है।
0: तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रश करना और कितना टाइम देना। जल्दबाजी में लोग बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो मैम, जब बच्चों का आप जिक्र कर रही हैं, जैसे सर ने बताया कि नाखून है, बच्चे खा लेते हैं, कुछ और दिक्कतें परेशानी उनके सामने आती हैं, तो इससे रिलेटेड मैं समझना चाहूंगा कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपने दांतों का ख्याल रखें?
2: जैसे सर ने पहले बताया कि ओरल कैविटी इज ऑल्सो अ मिरर टू द सिस्टमिक हेल्थ, है ना। तो ये चिप्स है या कोल्ड ड्रिंक है या बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना, वो सिर्फ दांतों के लिए ही हानिकारक नहीं है, वो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर मैं सिर्फ दांतों की बात करती हूँ तो यही ये सारी चीजें एक तो स्टिकी होती हैं, ये दांतों में जाके, दांतों के बीच में जाके अटक जाती हैं। फिर ये हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनका खाना भी बनती हैं। तो इन द होल प्रोसेस क्या होता है कि दांतों में कैविटीज हो सकती हैं, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं जो जिनको फिर भरना पड़ता है, या फिर मसूड़ों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग गम्स होना या फिर बदबू होना, उसकी परेशानी होती है।
0: ठीक है।
2: और इसके अलावा बार बार बच्चों को बार बार मीठा खाना, उससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है। अगर आप बार बार मीठा खाते हैं या बार बार चिप्स खाते हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है।
1: मजेदार बात ये है कि बच्चों को आपने कहा चिप्स और ये

0: कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है और जो कैविटी बनाते हैं कीड़े उन्हें भी यही पसंद है।
1: हाँ।
0: तो ये बड़ा मजा आ जाता है। तो जो कीड़े हैं वो पार्टी करते हैं बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा तो पार्टी करके सो जाता है, लेकिन कीड़े सोते नहीं है, वो दांत के ऊपर बैठ के ये सब खाते हैं और काइंड ऑफ तेजाब बनाते हैं। उस तेजाब से वो दांत घुल जाते हैं, उसी को हम कैविटी कहते हैं।
2: कैविटी कहते हैं। बहुत खूबसूरत, मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था और वाकई मानना पड़ेगा आप डॉक्टर साहब कि आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। तो मैं इस सिलसिले को आगे लेकर जाता हूँ। सवाल तो बहुत है, बातों बातों में सवालों का जवाब आता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर पल्लवी आपसे ही समझना चाहूंगा, अंग्रेजी में पहले ये सवाल रख लेता हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच यंग पेशेंट्स हु आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर टीथ और स्माइल, स्पेशली इन द स्कूल और टीन ईयर्स, करेक्ट? तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद अगर हम करें तो आप उन युवा रोगियों से कैसे संपर्क करते हैं जो अपने दांतों या मुस्कान को लेकर खासकर स्कूल या किशोरावस्था में आत्म जागरूक होते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में?
3: देखिए, सबसे जरूरी है पहले उनकी परेशानी को समझना
2: जी,
3: कि क्या ऐसी परेशानी है उनके दांतों में या जो कि उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है। फिर दूसरी चीज मेरे लिए जरूरी है उन्हें ये समझाना कि टीनेज ईयर्स में जब आपके प्राइमरी दांत जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो टूट रहे होते हैं और आपके नए दांत परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं, तब दांतों का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे हम अगली डकलिंग स्टेज कहते ही हैं, कि जब आपके आगे वाले दो दांत बड़े दिखते हैं अलग से जो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने लगते हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। थोड़े टाइम बाद दांत अपने आप ही, जब आपके सारे परमानेंट दांत आ जाएंगे तब आपके दांत ठीक दिखने लगेंगे, विच विल एनीवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज युवा अवस्था में ये परेशानी होना कि मैं ब्रेसेस लगाया है, बहुत सारे बच्चों को ब्रेसेस लगाने के बाद मुस्कुराने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें लगता है कि लोग उनका शायद मजाक उड़ाएंगे या They don't feel confident enough.
2: जी जी।
3: तो उनको ये भी बताना कि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट, इट्स अ ट्रीटमेंट का पार्ट है
2: जी।
3: और इवेंचुअली आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे,
2: ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। Nice.
0: आजकल वैसे भी सेल्फी का जमाना है, सो हमारे को इन बच्चों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही आ जाते हैं कि मेरे दांत ठीक करिए, मेरी स्माइल ठीक करिए। और पेरेंट्स को आमतौर पर यह परेशानी होती है कि इनसे ब्रश कैसे करवाया जाए। बच्चे हैं, इनफैक्ट उसका बहुत ही सिंपल सा एक समाधान है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, जब पहला दांत आता है, अगर पेरेंट्स उससे भी पहले जब दांत नहीं भी होता है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि हमारा सुझाव है कि आप कोई भी गीला कपड़ा, साफ कपड़ा लेकर गीला करके कॉटन वगैरह बच्चे के जो मसूड़े हैं उन्हें साफ करने की हैबिट डालिए। बच्चे का मुँह साफ रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी मुँह साफ रखने की। फिर जब पहला दांत है तभी से आप दांत ब्रश करना शुरू करिए। उस तरह के ब्रश अवेलेबल हैं मार्केट में, महंगे नहीं हैं। और या कॉलेज हमारे पास, स्कूल में आइए, हम आपको फ्री भी दे सकते हैं। वो ब्रश करिए आप बच्चों का पहले दांत आने के टाइम से, और उनकी हैबिट बनती रहेगी, और जब बड़े होंगे तो वो अपने आप ब्रश करते ही रहेंगे। हम हैबिट्स बहुत लेट डालते हैं, ये दिक्कत है।
2: तो लिसनर्स, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर दोनों की बातों को हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन करें, तो यही समझ में आता है कि इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, इन बातों को सोचिए, समझिए और अप्लाई करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके दांतों को मजबूत करिए ताकि वो अच्छी तरीके से फल खा पाए और वो चबा पाए। क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग की एक फल अगर आपके दांत 32 हैं, 32 बार चबाएंगे, तो चबाना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि आपके स्वास्थ्य को मजबूत करती है। तो डॉक्टर पल्लवी, अब आपकी बारी है, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
3: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
2: हाँ, ये तो हो चुका है। हाँ, और दूसरा आप मुझे बताएं।
3: पहला नशा।
2: चलिए, नशा आप करिए, खुशबू का नशा करिए, काम का नशा करिए, मोहब्बत का नशा करिए, और नशे से अपने आप को बचा कर रखिएगा। यानी कि इस विषय पर हम बात करेंगे। मैम ने बहुत अच्छा इशारा कर दिया कि तंबाकू, सिगरेट या और भी प्रकार का नशा आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है। वो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर श्रद्धा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम यहां जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुखदीप सिंह, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा विश्वविद्यालय से। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ पीरियडोंटोलॉजी स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी से। तो एक बार फिर से सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, अपने श्रोताओं को हम सुना रहे हैं। तो सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सुखदीप सर जी। अगर कोई व्यक्ति यू कहें कि थोड़ा मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ अ पर्सन डज नॉट मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। यानी कि लिसनर्स, अगर कोई व्यक्ति अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि अपने दांतों का, यू कहें कि मौखिक स्वच्छता नहीं रखता है, तो क्या उसके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं सर?
1: सबसे आसान जवाब ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है और खाना खाने के लिए हमें दांतों की ज़रूरत है। और दांत सिर्फ दांत नहीं, स्वस्थ अच्छे दांत। और दांतों को अच्छा रखने के लिए अच्छे मसूड़े चाहिए, क्योंकि मसूड़ों के अंदर ही दांत होते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते, क्योंकि हमें 32, 28 या 20, 30 दांत मिले हुए हैं मुफ्त में और हम उसको अब्यूज़ करते रहते हैं। वो एक खराबी हो गया तो निकाल दिया, फिर भी 20 हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब ये दांत हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर हम कुछ खा नहीं पाते ढंग से, और इसके फिर बहुत सारे नतीजे हैं। जैसे कि सबसे पहला ये है सिंपल सा कि आप खाने का मज़ा नहीं ले सकते। अगर आप खाने का मज़ा नहीं ले, जिंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं है। हमारी भाषा में कहते हैं दांत गए थे खान गया, जहान गया। सो अगर आप खाना नहीं इंजॉय कर रहे हैं तो आपके पास आनंद लेने का एक मौका कम हो गया। दूसरा, अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं तो आपकी जो सेहत है वो गई। ये बहुत गहरी और उतनी सिंपल बात भी है कि दांत का काम बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अच्छा खाना पचा करके अंदर बॉडी में डालता है ताकि आपकी बॉडी चलती रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे और आप लंबा जिए और अच्छा जिए। सिर्फ लंबा नहीं, नॉट ओनली क्वांटिटी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कम इन। बाकी डॉक्टर पल्लवी आपको बताएंगे मसूड़ों के बारे में, ये एक्सपर्ट है उसमें।
0: हाँ ठीक है, चलिए बताइए डॉक्टर पल्लवी, गेंद अब आपके पाले में।
2: सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बोल दी है कि जहाँ दांत नहीं है वहाँ न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है।
0: जी।
2: बाकी मसूड़ों की बात है तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम हमारी भाषा में प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जर्म्स जो कि मसूड़ों को और दांतों को हानि पहुंचाते हैं। तो सूजन से शुरू होता है मसूड़ों में, सूजन मसूड़ों की सूजन बढ़ते बढ़ते मसूड़ों से खून आना, कभी कभी स्पॉन्टेनियस ही खून आ जाता है, कभी ब्रश करते वक्त या हार्ड, बहुत आमतौर पर लोग कहते हैं कि एप्पल खाते वक्त खून आता है। फिर बदबू, मुंह से बदबू आना। अब अगर आपने ये परेशानी को वहीं नहीं रोका, अगर आपने, हम डेंटिस्ट के पास नहीं आते हैं, स्केलिंग नहीं करवाते हैं, अपनी ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यही कीटाणु आपके चले जाते हैं हड्डी तक, दांतों की हड्डी तक। फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो कि इवेंचुअली दांतों को ढीला करता है, लीड्स टू मोबिलिटी और अगेन दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं।
0: आम भाषा में कहें तो हम पोपले हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भैया ये गुरु मंत्र आपको दे दिया है, इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। डॉक्टर पल्लवी, नशे का आपने जिक्र किया, नशा एक गाना हमने सुना बहुत ही खूबसूरत गाना था, लेकिन मैं यहाँ जिस संबंध में बात करना चाहता हूँ, तंबाकू है, सिगरेट है, कोयला का अपने आप में नशा है कि लोग कोयले से मंजन करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे दांतों के लिए?
2: गाने के लिए तो ठीक था।
0: जी जी जी जी।
2: पर नशा तो नुकसानदायक है ही।
0: जी।
2: अब चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू हो या बीड़ी, खैनी, किसी भी तरह का नशा हो, वो दांतों तक ही नहीं, वो बाकी आपके मसूड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए ही बहुत नुकसानदायक है। और हम सभी जानते हैं कि नशा करने से कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं।
0: ये बात निकल कर आई सामने।
2: और इंडिया में इस बेल्ट में हमें अनफॉर्चुनेटली ओरल कैंसर के केसेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग, काफी दिखाई देते हैं।
0: जी।
2: और बड़ा तकलीफ है, इलाज भी बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ कहना चाहूंगी कि ये इलाज बहुत महंगा है हर तरह से।
0: जी एक विज्ञापन मेरे जहन में आ रहा है, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो पिक्चर भी दिखाई जाती है कि एक जबड़ा दिखाया जा रहा है, उसको कैंसर था, वो उस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम अवेयर हैं, जब हमें पता है, तो आप सोचिए छोटी छोटी हमारी तनख्वाहें होती हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में लगा ही देंगे तो फिर हमारे पास सेविंग्स क्या होंगी। हाँ, अगर जाने अनजाने में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, लेकिन कहा कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुशनुमा बनाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करिए, सेविंग्स करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें साझा करते रहिए। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। अब की मेरी पसंद का गाना सुना देता हूँ मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी कि आप दोनों मेरी मुस्कुराने की वजह है, तो ये गाना आप दोनों के नजर सिर्फ सुरुषा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। समुदाय का जब जिक्र होता है तो यहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बातें होती हैं और उस कम्युनिटी से हम कनेक्ट करते हैं यानी कि कम्युनिटी को जोड़ने का काम करते हैं और इसीलिए ये प्रोग्राम बना है राबता, यानी कि हम आपसे राबता कर रहे हैं। और इसी संबंध में दो डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़े हैं जो कि बहुत अपने फील्ड के महारथी हैं और हर एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से बातें हो रही हैं। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर सुखदीप सिंह जी जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट शारदा हॉस्पिटल शारदा यूनिवर्सिटी से। आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो कि आप प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर पल्लवी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कुछ भ्रम होते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिथ, और दूसरी हम बात करें कि कुछ लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मिस अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो वो कैसे आप अपने शब्दों में लोगों को अवेयर करेंगे? जैसे कि मुझे समझ में आता है कि एक नशे का मंजन आता है, हमारी महिलाएं हमने देखा है कि वो रग रगड़ के उसका आनंद ले रही होती हैं। दूसरा हमने ये भी देखा है घरों में राख कोयला, तो कितना गलत है? मुझे समझ में आता है कि गलत है, कितना गलत है। और इसी में अगर आपको लगता है कि कुछ मिथ हैं, यही ये भी एक मिथ है, तो इस संबंध में आप रोशनी डालिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो मिथ लगता है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब दर्द है। कितने लोग बोलते रहते हैं हम तब तक नहीं आए क्योंकि दर्द नहीं था मैम।
0: जी,
1: जैसे सर ने बताया कि अगर आप दर्द का वेट करेंगे तो तब तक आपका दांत या तो इतना कमजोर हो गया होगा कि बचाना मुश्किल होगा, या फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा, मे बी डिफिकल्ट और महंगा हो चुका होगा। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है हर 6 महीने में,
0: हर छह महीने में। जी।
1: और दांतों में दर्द का इंतजार नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा ही दांतों में खाना फंसता हो या मसूरों में सूजन लगती हो या कभी ब्लीडिंग हो रही हो या बदबू आ रही हो, ये सभी परेशानियां बड़ी परेशानियां का इंडिकेशन है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें हमारी परेशानी बड़ी हो जाए।
0: जी।
1: एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, लोग कहते हैं ब्रश तो करते हैं।
0: हाँ।
1: अब सिर्फ ब्रश करना ही जरूरी नहीं है। ब्रश दिन में 2 बार करना, रात को ब्रश करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुबह का ब्रश है। मेरी समझ से इनफैक्ट रात वाला ब्रश थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो जर्म्स हमारे पार्टी कर रहे हैं ना, उनकी पार्टी को बंद करना है। हमें रात को ब्रश करके लाइट्स आउट करना है कि पार्टी ओवर।
0: जी जी,
1: 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है नहीं।
0: नाइस।
1: ठीक है, ऊपर से जैसे हमने बताया कि ब्रश करने का एक सही तरीका
0: भी है, सलीका
1: जरूरी है, सलीका भी है। फिर एक ब्रेसेस के लिए, लोग अधिकतर मानते हैं कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। आजकल एक इन्विजिलाइन करके ट्रीटमेंट आता है जो कि अडल्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है एंड डूएबल है, विच हेल्प यू नो क्रुकेड दांत है, टेढ़े मेढ़े दांतों हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बने हैं।
0: जी।
1: उसके बाद एक सर ने जैसे बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसिव बनाते हैं क्योंकि हम तब तक इंतजार करते हैं कि दर्द ना हो हमें।
0: जी,
1: दूसरी
0: जी।
1: बात, आप हमारे यहाँ आइए शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज में, जहाँ पे अधिकतर ट्रीटमेंट हम फ्री भी करते हैं और बहुत ही
0: कंसेशन के साथ
1: रियायत करते हैं, बहुत ही।
0: वेरी गुड। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो कोयले को मंजन के साथ मतलब इस्तेमाल करते हैं, कोयले की राख को और इस तरह से नशे का जो है, तो क्या कहना चाहिए?
2: आजकल बहुत ही उम्दा टूथपेस्ट मिलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एडवांस्ड है और महंगे भी नहीं है।
0: जी।
2: इसकी कुछ वजह है, इसकी वजह ये है कि जो ये आप बता रहे हैं कोयले की कोयला या राख से करना, वो डेफिनेटली हानिकारक है और काफी हानिकारक है दांतों के लिए, और आगे जाके जो आपके दांतों को इरिवर्सिबल नुकसान करते हैं, आपको 6 दांत खोने पड़ेंगे अपने। मिथ्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोग आगे कहते हैं हमारे को पेरेंट्स के बच्चों के दांत जो दूध के हैं उनका क्या साफ करना है, वो तो गिरी जाने हैं। ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो करीबन 12-13 साल की उम्र तक रहते हैं, और 12-13 साल तक की उम्र का बच्चा अगर ठीक से नहीं खा पाएगा, 6 साल पे दांत खराब हो गए, 7 साल पे दर्द हो रहा है या पस भरी हुई है, तो खाना नहीं खा पाएगा, तो ग्रो कैसे करेगा? उस उम्र में बच्चे को ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों को है कि दूध के दांत साफ करने का क्या फायदा, गए तो गए, कोई बात नहीं, निकल ही जाने, नए आ जाएंगे, पर नए कब आएंगे? जाएंगे 12-13 साल की उम्र में। दूसरा बहुत सुनने में आता है कई बार कि ऊपर का दांत निकाल देंगे तो आंखों पे असर पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों के ऊपर के दांत निकाले हुए हैं,
0: दाढ़ का भी जिक्र होता है,
2: जाड़ का खास तौर पे, कि ऊपर की जाड़ निकालेंगे तो आंख पे असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, देखिए अपने इर्द गिर्द कितने लोगों के दांत उभर कर निकाले हुए हैं, क्या वो सब अंधे हो गए हैं?
0: जी।
2: तो ये ऐसे बहुत सारे और भी मिथ हैं, लेकिन आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन राख और कोयले से कतई बिल्कुल भी ब्रश मत करिए, दांत साफ मत करिए।
0: सर, इसी से संबंध में मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो अक्सर मैंने देखा है, सुना है कि नमक और सरसों का तेल मिला के लोग करते हैं, वो कितना गलत है या सही?
2: बहुत लोग करते हैं, हमने भी सुना है। देखिए, हमारी किताब में साइंस में इसके बारे में कुछ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर, क्योंकि आजकल बहुत सारा नेचुरोपैथी का ज़माना है, अगर कोई उस पे जो एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि इसके पीछे कुछ रिसर्च की है और उससे कुछ फ़ायदे हुए हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, पर हमारी किताब में, हमारी साइंस में कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है।
0: तो दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इस बात को अगर हम समप करें, निष्कर्ष निकालें कि अपने दांतों का ख्याल रखिए, बहुत गहनता से अच्छी तरीके से सर ने, मैडम ने ये बातें हमें बताई और ब्रश जरूर करेगा। साधारण तरीके से यही समझ में आता है कि अच्छा खाइए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए, दांत मजबूत रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह सातवें आसमान पर रहेगा, और निश्चित तौर पर कहीं कुछ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो वो इंटरव्यू आप फाइट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं एक दावत भी देता हूँ कि अगर आप जब भी समय मिले कोई दूसरी श्रृंखला करना चाहें तो ढूंढिएगा गगन का, गगन के साथ ही मुझे दूसरी श्रृंखला करनी
2: है। जरूर जरूर जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और खुश रहे, आबाद रहे।
0: क्या बात है, कुछ अगर और कुछ कहना चाहें?
1: थैंक यू सो मच, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हैं।
0: अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हुए हैं और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। फिलहाल किसी के दिल में जगह बनानी हो तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ना टेंशन लेना, ना किसी को टेंशन देना, जिंदगी को सरल, खुशनुमा, आसान बनाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप अपना कॉमेंट दे सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्ड

किसान मित्रों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है। इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से किसान भाइयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे किसान भाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर हमारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनकी फसल का बीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे किसी भी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, बात करेंगे कि बीमा करवाने के बाद अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपकी फसल नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका मुआवजा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। और अब आप जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही आपको अपनी जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो किसान भाई के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये रागनी। अब बात करते हैं FPO की, यानी कि किसान उत्पादन संगठन की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों को अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती हैं। हमारे सीमांत और छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे हमारे किसानों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करते हैं। FPO छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है, साथ ही ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान उत्पादन संगठन यानी FPO के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के हिसाब से उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती में आने वाली लागत कम हो। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच कराई जाए। स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह सही खान पान की आवश्यकता होती है,

0: उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और इन पोषक तत्वों के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं। उसी से ये बात सामने आती है कि हमारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या फिर किन की अधिकता है, उसी के हिसाब से खेत में खाद का प्रबंधन किया जाता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि खेत से भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।
1: रात सपन में दशकंदर तेरी

सुनील चौहान और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

प्रेमी सजनों, आप सभी जानते हैं जले हुए शरीर में इतनी जलन होती है कि जिसे आदमी

की आवाज में इशारे से दरोगा को अपने पास बुलाती है। दरोगा जी, जब तुम मुझे अपनी धर्म की बेटी मान चुके हो तो मेरा हिमाती अब इस समय दूसरा संसार में नहीं। आप मुझे अपने धर्म की बेटी मानते हुए मेरे मात पिता और भाई को रामगढ़ी से बुलवा दो। प्रेमी दोस्तों, तसल्ली दिलाता है दरोगा बेटी उर्मिला, राम और घनश्याम पर क्या ये विपत आई नहीं? राम और घनश्याम पर क्या ये विपत आई नहीं? कौन है जिस पर कि ये काली घटा छाई नहीं? धीरज धराता है लेकिन उर्मिला के मन में कहां चैन था। मेहरबानों एकदम से कह उठी, दरोगा जी मेरी बात सुनो और किस

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया,

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है और लोगों से अपील करता है कि हम सबको मिलकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यही एक वजह है कि स्मार्ट के सौजन्य से हम लोग मिलकर एक महिलाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, या यूं कहें कि जागरूकता वाला कार्यक्रम हम आपके बीच पहुंचा रहे हैं। आज विषय है लैंगिक हिंसा। इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं, तो धीरे धीरे शनि शनि ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसी संबंध में आज हम चैप्टर 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसका टाइटल है किशोर और लैंगिक हिंसा के बारे में आंकड़े हमें क्या दर्शाते हैं, आंकड़े दरअसल हमसे कहते क्या है। तो इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में लगभग 240 मिलियन किशोर, जिनकी उम्र है 10 से लेकर 19 वर्ष, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। किशोर की प्रगति और बेहतरी के मुख्य संकेत ये इशारा करते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है। इनमें से कुछ संकेतों में लैंगिक विसंगतियां गंभीर हैं, जनगणना के आंकड़े बच्चों के लिंगानुपात और जिनकी उम्र है 0 से लेकर 6 वर्ष उसमें सतत गिरावट दर्शाते हैं, और वहीं 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों की तुलना में 2011 में 914 लड़कियां रह गईं। इसके अलावा जन्म के एक महीने के बाद की अवधि में कन्याओं की मृत्यु जो है वो बहुत ज्यादा दर्ज की गई। अधिकांश देशों में जहां शिशु तथा बाल मृत्यु केवल जैविक रूप से चालित है, वहीं जन्म के प्रथम महीने के पश्चात पहले वर्ष के दौरान बालिकाओं की मृत्यु पुरुषों की मृत्यु की अपेक्षा कम है। हालांकि भारत में प्रसव पश्चात नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित प्रसवों पर 1 से लेकर 11 महीने

0: 23 के रूप में बालिकाओं की मृत्यु दर, प्रति हजार पर 14 के रूप में बालकों की मृत्यु दर से 61% अधिक है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हो जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार बहुत अधिक बना हुआ है और समग्र रूप से 47.4% या प्रत्येक दो में से एक महिला बालिका वधु थी। सिर्फ आंकड़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो आंकड़ों में भारत में 20 से 24 वर्ष आयु समूह की कुल महिलाओं यानी कि 2000 की जनगणना पर आधारित ये बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, उसमें से 23 मिलियन से अधिक बालिका वधु पाई गई। लड़कियों के शीघ्र विवाह के परिणाम बहुआयामी होते हैं, जिनमें शीघ्र गर्भधारण, पोषण में कमी का अंतर, पीढ़ीगत हस्तांतरण, शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सीमित अवसर आदि शामिल है, जिससे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये इशारा करने वाले साक्ष्य भी बढ़ रहे हैं कि 18 वर्ष से पूर्व विवाहित हो जाने वाली लड़कियों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना किए जाने की संभावनाएं देर से विवाह वाली उनकी समकक्ष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। शीघ्र विवाह के हानिकारक कुप्रभावों की अगर हम बात करें तो उसके चलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शीघ्र विवाह भारत में प्रति लाख जीवित प्रसवों पर 200 मौतों के ऊंचे मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी MMR का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो कि विश्व में एक सर्वाधिक आंकड़ा है। यदि लड़कियां जीवित भी बच जाती हैं तो उनके कुपोषित रहने की संभावना अधिक रहती है। 15 से 19 वर्ष की आयु की अधिक लड़कियां कुपोषित हैं। पूर्ण टीकाकरण के आंकड़ों से भी लैंगिक अंतर परिलक्षित होता है। जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण कराए जाने की संभावना कम रहती है, वहां वास्तव में NFHS1 और NFHS3 के दरमियान पूर्ण टीकाकरण के बारे में संकलित NFHS आंकड़ों से पता चलता है कि लैंगिक अंतराल न केवल बना रहता है बल्कि समय के साथ ये बढ़ता चला जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। आप कहीं जाएगा मत, हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एक विशेष कार्यक्रम लैंगिक हिंसा के संबंध में एक खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: देखो रामा ने गाना शुरू कर दिया, अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम के बारे में, और इसी संबंध में आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालिकाओं को समान स्पर्धा क्षेत्र उपलब्ध कराने, साथ ही उनके उत्तरवर्ती सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण एक प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, जो कि शिक्षा हम सब के लिए वाकई बहुत जरूरी है। लड़कियों का माध्यमिक स्कूल नामांकन में भी लैंगिक असमानता स्पष्ट देखने को मिलती है। स्कूल वर्ष की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2006 में 6 से 17 आयु के 71% बच्चे स्कूलों में थे, नगरीय क्षेत्रों में 77% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69%। हालांकि 6 से 17 वर्ष की केवल 66% लड़कियां स्कूलों में थी, जबकि इसी आयु वर्ग के लड़कों का प्रतिशत 75% था। 2005 से लेकर 2006 स्कूल वर्ष में स्कूल जाने वाले 6 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियों के रूप में था। वास्तव में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट दिखती है, और ये 6 से 10 आयु समूह में 957 से 11 से लेकर 14 आयु समूह में 884 और फिर 15 से लेकर 17 आयु समूह में केवल 717 तक पहुंच जाता है। हालांकि 15 से लेकर 17 आयु समूह के बच्चों में स्कूलों की उपस्थिति के आंकड़े जो हैं लड़कियों और लड़कों दोनों के मामले में कम है, लेकिन इस आयु में लड़कों की तुलना में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत अधिक है। हालांकि आयु के आधार पर स्कूल उपस्थिति के आंकड़ों का एक परीक्षण ये प्रकट करता है कि स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से एक ग्रामीण परिघटना है। शहरी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है लगभग समान है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता प्रत्येक आयु वर्ग में परिलक्षित होती है, और ये आयु बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। शहरी क्षेत्रों में 15 से लेकर 17 आयु वर्ग के केवल लगभग आधे बच्चे ही स्कूल जाते हैं, जिनमें लड़कियां लड़कों से कम है। अब बात ये सामने आती है कि देश में बड़ी तादाद में महिलाओं के लिए घूमने फिरने यानी कि आवाजाही की स्वतंत्रता में गंभीर कटौती की जाती है। हालांकि युवा किशोरियों के मामले में प्रतिबंध बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि बहुत कठोर है। लड़कियों के मामले में ये काफी मायने रखता है, क्योंकि आवागमन में वृद्धि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। कुल मिलाकर यूं कहें कि 15 से लेकर 49 आयु समूह की केवल 1/3 महिलाओं को ही अकेले बाजार जाने, स्वास्थ्य केंद्र पर जाने और समुदाय से बाहर जाने की इजाजत यानी कि अनुमति मिल पाती है, और इसके विपरीत युवा महिलाओं के मामलों में ये प्रतिशत और भी कम हो जाता है, जहां 15 से लेकर 19 आयु वर्ग की केवल 12.8% महिलाओं को ही 3 स्थानों पर जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जबकि 20 से लेकर 29 वर्ष की महिलाओं के लिए 28% है। आयु के अलावा वैवाहिक स्थिति भी एक खास चर्चा का विषय है। युवा और सर्वदा अविवाहित महिलाओं को आवाजाही की सबसे कम आजादी होती है, या यूं कहें स्वतंत्रता होती है। जिनकी उम्र 40 तक पहुंच जाती है उन महिलाओं में भी केवल लगभग आधी महिलाओं को ही इन तीनों स्थानों पर अकेले जाने की अनुमति होती है, जिसके बारे में हम यहां आपसे बात कर रहे हैं। जबकि लड़कों के लिए रोजगार प्राप्त करने या किसी अन्य के लिए कार्य करने की संभावना लड़कियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों द्वारा कई प्रकार के विपरीत जनसांख्यिकीय, प्रजनन संबंधी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करने की संभावना पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है। हिंसा से स्वतंत्रता न केवल स्वयं में स्वास्थ्य लक्ष्य है, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है, और खास बात यह कि ये व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि 28% युवा महिलाओं द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया जाना पाया जाता है। और बात सामने ये भी आती है कि शारीरिक और यौन हिंसा का दायरा शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा है, और हर प्रकार की हिंसा का प्रचलन किशोर की तुलना में अधिक आयु के युवा लोगों में,
साथ ही कभी कभी विवाहित न होने वाले लोगों की तुलना में कभी विवाहित महिलाओं में अधिक है। और आंकड़े कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश घरेलू हिंसा पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के विरुद्ध की जाती है। कुल मिलाकर कभी विवाहित 37% युवा महिलाओं ने अपने जीवन साथी की ओर से शारीरिक, यौन या यूं कहें कि भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। इसके अलावा किशोर के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों में प्रजनन मार्ग संक्रमण यानी RTI, साथ ही HIV सहित यौन संचारित संक्रमण शामिल है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 से लेकर 19 आयु समूह में केवल 18.6% महिलाओं, साथ ही साथ 34.5% पुरुषों को ही HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी थी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। स्मार्ट की सौजन्य से आप सुन रहे हैं एक खास जानकारी महिलाओं के ऊपर और विषय है लैंगिक हिंसा। इसी के संबंध में जो आंकड़े हमें बता रहे हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट के सौजन्य से महिलाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का जो विषय है लैंगिक हिंसा। इसी संबंध में बहुत सारी बातें हो चुकी है, कुछ बातें और भी होना बाकी है, और इसी संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं वो आंकड़े मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात आगे बढ़ती है तो बात सामने आती है कि भारत में किशोर वय की आयु के अनुसार स्तरीकृत आंकड़ों का अभाव है। पॉपुलेशन काउंसिल द्वारा भारत में 10 से लेकर 19 वर्ष आयु के किशोर वय की जरूरतों के बारे में एक हालिया साक्ष्य डेस्क सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 10 से लेकर 14 वर्ष आयु के अपेक्षाकृत छोटे किशोर वय के बारे में शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रकाशित साक्ष्य बहुत कम है, या यूं कहें कि नहीं है। इसके अलावा अधिकांश उपलब्ध साक्ष्य युवाओं को 15 से 24 आयु वर्ग श्रेणी में रखकर बनाए गए और आयु स्त्रीकृत आंकड़े की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। साथ ही 10 से लेकर 19 आयु वर्ग के किशोर वय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जबकि ये विशेष प्रकार के शारीरिक साथ ही भावनात्मक परिवर्तनों के कारण बहुत महत्वपूर्ण आयु समूह होता है। बात सामने आती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। इसी संबंध में बात निकल कर ये आ रही है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग भारतीय दंड संहिता तथा विशेष और स्थानीय कानून, इसी में बात निकल कर ये आई है कि 2012 की तुलना में 2013 में 26.7% की वृद्धि दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश, जहां देश की महिलाओं की जनसंख्या का 7.3% भाग है, उसकी 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल अपराधों में से उसकी 10.5% की हिस्सेदारी रही है। और वहीं 2013 में महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की दर 52.2 थी। वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध हुए, जहां की 52.2 की राष्ट्रीय अपराध दर के मुकाबले 146.0 की दर रही। और याद रखने लायक जो बिंदु हैं, जो खास बातें, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग किशोर वय का होने के कारण इसे जननांकीय के रूप में लाभप्रद स्थिति में कहा जाता है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या यूं कहें कि अति आवश्यक है। दूसरी बात, बालिकाएं और किशोरियां जीवन के सभी स्तरों पर विशेष रूप से वंचित हैं। घटता लिंगानुपात, स्कूलों में कम उपस्थिति, आवाजाही पर प्रतिबंध, रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर, साथ ही यौन हिंसा के प्रति असुरक्षा। अगला पॉइंट है, 2013 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों की संख्या में 26.7% की बढ़ोतरी पाई गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में अपराधों की दर सबसे अधिक पाई गई। तो इन बातों का, इन आंकड़ों का यहाँ आपसे डिस्कस करने का मतलब मकसद यही है कि हम अगर इसी तरीके से चलते रहे और यूं ही आंकड़े बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो अनुपात है वो अभी भी गड़बड़ाया हुआ है और कहीं ज्यादा ना गड़बड़ाया जाए। इसलिए लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर निकलना चाहिए। जिस तरीके से आजादी की बात होती है हम सब के लिए, तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, बच्चों की भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में जानना समझना जरूरी है कि आप कहाँ थे, कैसे थे, और आप हमें बताकर जाएं, हमसे आप कुछ ना छुपाएं। तो ये बातें घर की हैं, या यूं कहें कि संस्कारों की बातें, जो कि अगर आप अपने माता पिता से साझा कर जाएंगे तो वो भी निश्चिंत रहेंगे और आपके बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे। हाँ, मेरा बच्चा वहां मुझे बताकर गया है, मेरी बच्ची वहां मुझे बताकर गई है। तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपने अभिभावकों को भी बताकर चलें, उनको साथ लेकर चलें कि हम कहाँ हैं, यानी कि आजादी का आप और हम गलत फायदा भी ना उठाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार होता।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पू, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषद केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनि शाला। अस्तु तर्हि चलामः अष्टम कक्षायाः ध्वनि शालायाम्।
2: प्रियाः छात्राः, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अद्य वयम् संस्कृतस्य अष्टम कक्षायाः रुचिरा नाम पुस्तकस्य एकं पाठं सदैव पुरुतो निधेहि चरणम् इति पठिष्यामः। अहमस्मि कृष्णचंद्र त्रिपाठी। बच्चों, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम् ये पूरी पंक्ति है।

ही चरणम। अपने पैरों को हमेशा आगे रखो, अर्थात आगे बढ़ाओ। आगे जाने के लिए अपने कदम को आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। ये कविता श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है। इस गीत के माध्यम से कवि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। ये कवि राष्ट्रवादी कवि है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। पाठ बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको आपके सामने गाने का भी प्रयास करता हूं। चल चल पुरुतो निधे ही चरणम, चल चल पुरुतो निधे ही चरणम, सदैव पुरुतो निधे ही चरणम, सदैव पुरुतो निधे ही चरणम।

रोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आगे क्या है? पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंस्राः पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरुतो निधेहि चरणं, सदैव पुरुतो निधेहि चरणं, सदैव पुरुतो निधेहि चरणं। अब आपने कविता को सुना, जिसका मतलब है कि हमेशा कदम को आगे बढ़ाओ। इंग्लिश में भी कभी हमने पढ़ा था, नेवर लुक बिहाइंड वॉइस व्हेन यू आर ऑन द वे। जब आप चल रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। यहां कवि कहते हैं सदैव पुरुतो निधेहि चरणम्, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाओ। अब देखिए कविता बहुत सरल है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पाठ को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ना। 3 बार पढ़ना क्यों कहता हूं? क्योंकि संस्कृत का वातावरण आपके पास बहुत कम है, आप कक्षा के अलावा दूसरी जगह संस्कृत का माहौल नहीं पाते हैं। यद्यपि जो मातृभाषा आप प्रयोग करते हैं, चाहे जौन सी मातृभाषा आपकी, उसमें 60-70-80% शब्द संस्कृत के ही होते हैं। आप अपना नाम ही देख लीजिए, कोई भी नाम आपका हो, सीता, गीता, मीता, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, अथवा रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो आप वस्तुतः संस्कृत बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग, दैनंदिन जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा कठिन लग सकती है। लेकिन जब आप किसी पाठ को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको उस पाठ का जो भाव है, उस संस्कृत का जो भाव है, वो 80% तक क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है। अब देखिए इस कविता में चल चल, चल चलो, चल चलो, चलो चलो, क्या पुरतो माने सामने निधे ही चरणम, अपने कदम को आगे रखो। चलो चलो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ या आगे रखो। इतना ही नहीं, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे ही रखो, कदम को आगे बढ़ा करके रखो। अब

आगे बढ़ने में समस्याएं तो होंगी। अब जैसे कहते हैं सामने समस्या आ गई, गिरि शिखरे ननु निजि निकेतनम। मान लो गिरि माने पर्वत, शिखरे माने चोटी पर, निज माने अपना, निकेतनम माने घर। पर्वत की चोटी पर अपना घर है। मान लो पर्वत की चोटी पर अपना घर है, तो पर्वत की चोटी से तात्पर्य आप पहाड़ में रहते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन हमारा हर कार्य बहुत आसान नहीं है। जैसे घर पर्वत की चोटी पर ऊंचा है, कठिन है, उसी प्रकार हमारे कार्य भी कठिन हो सकते हैं। तो हमको उसका कैसे सामना करना है, कार्य को कैसे पूरा करना है। बिनई वयानम नगारोहणम। साधन क्या है? बिनई वयानम, कोई यान नहीं है, कोई सवारी नहीं है। बिना किसी सवारी के हमको नगारोहणम, नग माने पर्वत, पर्वत पर चढ़ना है। गिरि के पर्वत के शिखर पर हमारा घर है और बिना किसी सवारी के हमें पर्वत पर चढ़ना है। तो हमारे लिए साधन क्या है भाई? बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम बलम, अपनी ही ताकत, अपना ही बल हमारा साधन होता है। तात्पर्य हमारा यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। यदि कठिन है तो इस तरह हो सकता है कि जैसे मानो पर्वत की चोटी पर हमारा घर हो और बिना किसी साधन के हमको उस पर्वत पर चढ़ना हो। तो साधन हमारा क्या होता है? हमारा बल, हमारी शक्ति। इसलिए जब हमारा बल, हमारी शक्ति ही हमारा साधन है, तो सदैव पुरुतो निधे ही चरणम, अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाओ, कदम को हमेशा आगे बढ़ाओ। अब तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में जिधर भी जो भी कार्य आप करें, अगर उसमें कठिनाई आती है तो याद रखो आपकी अपनी शक्ति ही, आपका अपना बल ही आपका साधन है, और उसी साधन के सहारे आगे बढ़ो, अर्थात अपने कदम को आगे बढ़ाओ। अब कहते हैं रास्ते में और क्या समस्या मान लो हो जाए तो, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा। पथि रास्ते में पाषाण है, पत्थर है। कैसे पत्थर है? विषमाः टेढ़े मेढ़े पत्थर है, प्रखराः नुकीले पत्थर है, यानी लग जाएगा, चोट लग सकती है। और क्या है समस्या? क्या क्या है? हिंसरा पशवः, हिंसक पशु हैं, हिंसक पशु हैं, हमारे काम को बिगाड़ दे, हम ही को नष्ट करने में समर्थ हिंसक पशु हैं। परितो घोरा, परितो चारों, घोर माने भयंकर, हिंसक पशु भी हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। यद्यपि गमनम माने जाना या चलना, सुदुष्करम बहुत दुष्कर है, कठिन है। यद्यपि ऐसी स्थिति में चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सदैव पुरुतो निधे ही चरणम, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाओ, सामने बढ़ाओ। ये दोनों सिचुएशन ऐसी आई है कि ये तो पर्वत का उदाहरण लिया कवि ने कि जैसे हमारा घर पर्वत पर है और हमको उस पर जाना है और बिना किसी सवारी के, बिना किसी सहायता के पर्वत पर चढ़ना है, तो हमारा साधन हमारी शक्ति ही है। और भी समस्या रखा कि रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं और चारों ओर हिंसक पशु हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति में चलना मुश्किल है, तथापि हमको अपने पैरों को आगे ही बढ़ाना है। तो क्या करें? कवि निर्देशित करता है, कवि रास्ता स्वयं बताते हैं। क्या बताते हैं? जही ही भीतिम,
जही माने दूर करो, जही माने दूर करो, क्या दूर करो, भीतिम भय, भय को दूर करो यानी अपना डर हटा दो। भज भज शक्तिम, अपने शक्ति का स्मरण करो, भय को दूर करो और अपनी शक्ति का स्मरण करो। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, राष्ट्रे अपने राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम विधे, अनुराग रखो, प्रेम रखो। और मेन बात अब बोल रहे हैं, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु माने करो करो, क्या करो, स्मरणम कुरु, स्मरण करो, स्मरण रखो। सततम माने हमेशा, क्या, ध्येय लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है उसे हमेशा याद रखो। सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। अब देखिए चार पांच बार मैंने बोला, अब सब पता लग रहा है कि पुरुतो माने सामने, हमको कदम आगे बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाना है। तो कदम से तात्पर्य है, यदि पढ़ना है तो आगे बढ़ के पढ़ना है, लिखना है तो आगे बढ़ के लिखना है, स्मरण करना है तो आगे बढ़कर स्मरण करना है। जो ध्येय है, जो आपका लक्ष्य है, उसको हमेशा स्मरण रखना है। ध्येय से, लक्ष्य से कभी भी दूर नहीं होना है, भटकना नहीं है। पाठ तो हमने कर दिया, अब इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। पुरुतो हमने बताई दिया, आगे सामने, निधेहि रखो, गिरि शिखरे, गिरि माने पर्वत, शिखरे माने चोटी, पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतनम माने घर, अपना घर। बिनैव बिना ही नगारोहणम, नग पहले बताया पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, पर्वत पे चढ़ना। स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणाह पत्थर, विषमाह एक होता है संपत्थर, और विषम माने असामान्य टेढ़ा मेढ़ा पत्थर। प्रखराह नुकीला पत्थर, हिंसराह हिंसक, परितो चारों ओर, घोराह भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। जही छोड़ दो, जही छोड़ दो, भज भजो जपो, विधेह करो, अनुरक्तिम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण करते रहो। लक्ष्य को कभी भी भूलो मत, लक्ष्य को हमेशा स्मरण करते रहो। अब अभ्यास कार्य में बड़ा बढ़िया है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में जो गीत है उसको सस्वर गाओ। सदैव पुरुतो निधेहि चरणम, सदैव पुरुतो निधेहि चरणम। अपने अध्यापक से अथवा म्यूजिक टीचर से इसकी धुन बनवा लीजिए और बढ़िया से गाइए। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणि माने उत्तर, एक पदेन लिखत, एक पद में, वन वर्ड आंसर, एक शब्द में इसका आंसर करना है आपको। क्या, पहला है स्वकीयं साधनं किं भवति, बहुत बढ़िया प्रश्न। स्वकीयं साधनं किम भवति, अपना साधन क्या होता है भाई, तो कहते हैं स्वकीयं बलम, अपना बल ही अपना साधन होता है। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में क्या विषम और नुकीले हैं, तो पाषाणाः पत्थर, रास्ते में पत्थर टेढ़े मेढ़े। सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम करणीयम,
सततम् ध्येय स्मरणम् करणीयम्। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, हमने पहले ही पढ़ा है, गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वरणेकर महोदयाः सन्ति। स कीदृशः कवि मन्यते, सः राष्ट्र कवि मन्यते, राष्ट्रवादी कवि मन्यते। अब अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजूषा से क्रियापदों को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण देखिए, त्वं पुरतः चरणं निधेहि, आप सामने अपना कदम बढ़ाओ। अब देखिए, त्वं विद्यालयं, आगे जो दिए हुए हैं, निधेहि विधेहि जहीहि देहि भज चल कुरु, तो यहां त्वं विद्यालयं चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, महियम जलम देहि मूढ़, अब इसमें कहें जहीहि मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम। आगे है गोविंदम, तो भज भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। अगला प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। यथा पुरतः चरणम निधेहि, ये उचित कथन है या सत्य कथन है? हाँ, तो लिख दिया आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति आम, स्वकीयं बलम बाधकं भवति नहीं न, इसमें करना होगा ना। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, ये भी ना। पथि में हिंसक पशु हैं। गमनम सुकरम अस्ति ना, कठिनम अस्ति। सदैव अग्रे एव चलनीयम आम। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। अब ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे वाक्य बनाइए और इनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। जैसे परितः, परितः का मतलब होता है, परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो परितः, जैसे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, परितः हो गया। पुरतः, तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम। नगः माने पर्वत, हिमालयो नाम नगः, नागः नाग सर्प के लिए होता है ना, तो वासुकी नाम नागः आसीत। आरोहणम सः पर्वतम आरोहति, अवरोहणम सः पर्वतात अवरोहति। आरोहण माने चढ़ना और अवरोहण माने उतरना। विषमाः, तो विषमाः प्रस्तराः सन्ति, समाह प्रस्तरा संति। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। ये अव्यय है, अव्यय शब्द जो जिनका रूप कभी नहीं बदलता। प्यारे बच्चों, संस्कृत में अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा अपने ही रूप में होते हैं। उनमें एक वचन द्विवचन बहुवचन अथवा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के रूप में उनका प्रयोग नहीं होता, वो अपना रूप कभी नहीं बदलते। एव ही खलु निश्चय, तथा वैसे, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, बिना बिना। अब देखिए वाक्य, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालयस्य पुरतः माने सामने एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है सदा, सत्यम सदा जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, एक वाक्य, यथा
और तथा हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यथा तथा का नित्य संबंध है, एक वाक्य में दोनों आते हैं, यथा और उसी बात तथा। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसे चिंतन करता है वैसे ही आचरण करता है। अब ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम डॉट डैश डैश तो यहाँ पर आएगा परितः, चारों ओर गांव की चारों ओर वृक्ष है। विद्याम जीवनम वृथा तो यहाँ पर आएगा विद्याम बिना जीवनम वृथा। भगवंतम भज, अब भगवंतम भज तो सदा भगवंतम भज। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाओ, जैसे पूर्वतः माने सामने तो इसका विलोम क्या होगा, पृष्ठतः, पूर्वतः पृष्ठ पृष्ठतः। स्वकीयम का विलोम क्या होगा, परकीयम, स्वकीयम माने अपना, परकीयम माने दूसरे का। भीति ही भय, और इसका विलोम होगा साहस, साहस। अनुरक्ति ही माने अनुराग, और इसका विलोम होगा विरक्ति ही। गमनम और गमनम माने जाना, आगमनम माने आना। तो इस तरह से हमने विलोम पद का अभ्यास कर लिया। अब अगला प्रश्न है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतो। लट लकार का पद दिया हुआ है क्रियापद, इसको हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में प्रयोग बनाना है। जैसे पठति हमारा लट लकार में है, तो इसका लोट लकार हुआ पठतु, विधिलिंग हुआ पठेत। अब खेलसी लट लकार है, खेलसी तो लोट लकार में हो गया खेल, खेले खेलत खेलतः खेलंती, खेलसी खेलतः खेलत, खेलामी खेलावा खेलामा, खेलत खेलताम खेलंतु खेल खेलतम खेल, खेलेत खेलेताम खेलु खेले। अब खादंती खादतु और खादेत, पिबामी है पिबत पिबताम पिबंतु पिबतम पिबत पिबानी पिबानी और पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत पिबे पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत। अब पिबामी है पिबति पिबता पिबंती पिबस पिबता पिबत पिबामी पिबावह पिबामा, है ना। तो लोट लकार में हो जाएगा पिबत पिबताम पिबंतु पिबे पिबतम पिबत पिबानी और पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेयम, पिबामी का हो गया पिबेयम। हसतः हसति हसतः हसन्ति, लोट लकार हसताम और हसेतम, नयामह नयामि नयावह नयामह। अब लोट लकार में हो गया नयतु नयताम नयन्तु नयानि नयाव नयाम नयाम हो गया, नयेत नयताम नयु नये नयतम नयेत नयेयम नयेयम हो गया, नयेव नयेम। अधो लिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत्, अब नीचे जो पद है इनको जैसा निर्देश दिया वैसे बदलना है। जैसे गिर शिखर सप्तमी एक वचन तो दे दिया गिर शिखरे, पठिन सप्तमी एक वचन पठि, राष्ट्र चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय, पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे, यान द्वितीय बहुवचन यानम याने यानानि यानम याने यानानि, शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति ही, पशु सप्तमी बहुवचन पशुषु। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब उसी निवेदन के साथ कि पाठ को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, भाषा की जो समझ है, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना, इसको दूसरे ढंग से कहें रीडिंग राइटिंग हियरिंग और स्पीकिंग। तो अब पाठ को 3 बार पढ़ो और लिखने का अभ्यास करो, तो जितने बार

0: बार आप पढ़ो, कम से कम उतनी बार इसको लिखो, तो ये पाठ तो आपको आएगा ही आएगा। इसके समानांतर आप दूसरे वाक्यों की रचना कर सकते हैं। इस तरह से यह पाठ संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में फिर मिलेंगे।
1: मित्राणि, संप्रति भवन्तः श्रुतवन्तः पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला। निर्माण सहयोगः तनु गुप्ता, जगबंधुः जाना च। ध्वन्यांकनम् बटिलैं लिंगडोहः शानु मुकसीमश्च। निर्माणम् विमलेश चौधरी तथा च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी, धरती का अमृत। श्रोताओ, पिछले भाग में आपने जाना कि हमारी पृथ्वी का आधा भाग लगभग हर समय बादलों से घिरा रहता है। बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। धरती पर कोहरा कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी,

0: अरे
1: सृष्टि, मानव की तो आदत ही हो गई है पानी व्यर्थ बहाने की। अकेला इतने पानी से नहाता है जितने में चार आदमी नहा ले। मानव बाहर निकलना,
2: पानी की कमी चल रही है और ये मानव है कि समझता ही नहीं। अरे
3: सुनो सुनो सुनो, तुम सब मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे आराम से नहाने दो उसे।
0: हाँ अभी मानव की तरफ तारी करने लग गए।
3: अरे बेटा वो
2: आपको तो मानव को समझाना चाहिए ना कि पानी इतना बर्बाद ना करें।
1: और वैसे भी अब नल में रोज पानी नहीं आता,
2: और जिस दिन नल में पानी आता है उस दिन भी पानी इतना कहाँ आता है कि हमारी सभी पानी की जरूरतें पूरी हो सके।
0: वो तो विवेक भैया है कि चौराहे वाले नलकूप से पानी लाकर जमा करते रहते हैं, वरना मानव इसको तो नहाने का तो छोड़ो मुंह धोने का भी पानी ना मिले।
1: पर सृष्टि अब चौराहे वाले हैंडपंप में पानी काफी कम हो गया, अब कैसे होगा?
2: तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
3: अरे वसुधा, वैसे भी हर साल इन दिनों में पानी की कमी हो ही जाती है।
0: पापा क्यों ना हम अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा लें।
2: हाँ बिल्कुल, अब तो ट्यूबवेल लगवाना ही होगा।
0: अरे दीदी आप नहाने की बड़ी जल्दी मचा रही थी ना, आप जाओ ना नहाने के लिए, गप्पे क्यों लगा रही हो बैठी हुई यहाँ पर?
1: माना सृष्टि गप्पे नहीं लगा रही, वो तो बाथरूम से तेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी।
0: ओ, ये मानव तो नहाने में भी आधा घंटा लगाता है और नहाता भी है तो दो बाल्टी से। अरे दीदी मैं पानी फालतू थोड़ी बहाता हूँ, नहाने में दो बाल्टी तो लग ही जाती है।
3: बेटा देखो एक बात तो है, जब हम एक बाल्टी पानी से अच्छी तरह से नहा लेते हैं तो फिर तुझे दो बाल्टी पानी क्यों चाहिए?
0: अरे पापा मैं ये सब नहीं जानता, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पानी बहाता नहीं बल्कि नहाने में उपयोग करता हूँ।
2: जो भी हो बेटा, पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आदतों में परिवर्तन तो करना ही होगा ना।
0: वैसे मम्मी कितनी अजीब बात है ना कि धरती के 3/4 भाग पर पानी भरा है फिर भी मुझको सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन मानव तुम्हें पता है ना, धरती के सारे पानी का करीब 97.2% भाग खारा पानी है जो समुद्रों में जमा है। हाँ दीदी लेकिन हमारे देश में कितनी सारी नदियाँ भी तो हैं।
2: लेकिन बेटा नदियों में भी कहाँ साल भर पानी रहता है बताओ तो?
3: वैसे भी भाई नदियाँ हमारे घर पानी देने थोड़े ही आ जाएंगे।
0: नदियाँ ना सही लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल तो लग ही सकता है। मानव तू बाथरूम में नहा रहा था या हमारी बातें सुन रहा था? दीदी वैसे मैं दोनों काम साथ साथ ही करता हूँ।
2: इसीलिए मानव तू ट्यूबवेल लगवाने की बात कर रहा है।
1: वैसे मम्मी साल के आधे दिनों में नल से पानी नहीं आता हो तो ट्यूबवेल तो लगवा ही लेना चाहिए।
0: मानव जब ट्यूबवेल लग जाएगा ना तो तुम दो बाल्टी की जगह 4 बाल्टी से नहाओगे।
3: बच्चों यही तो हमारी सोच में बदलाव की जरूरत है। देखो हमें किसी भी चीज को जरूरत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए।
3: करें
2: अच्छा तुम्हारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन बताइए तो ट्यूबवेल वाली बात का क्या हुआ?
3: अरे वसुधा ट्यूबवेल तो जब कहो तब लग जाएगा। अच्छा विवेक मुझे याद आया कि पिछले महीने तुम्हारे दोस्त वरुण के यहाँ ट्यूबवेल लगा था।
1: हाँ हाँ उसके यहाँ लगा था।
2: अरे विवेक तो फिर तुम उन बोरिंग वालों से बात कर लो ना।
1: अरे मम्मी बात करने को क्या कह रही हो, मैं उन्हें आज ही घर ले आता हूँ, मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है।
3: तो विवेक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा।
1: ये भी ठीक है।
0: मम्मी भैया आज बाजार जाएंगे ना तो आप मेरे लिए पिज्जा या नूडल्स मंगा लेना।
2: सुनिए जी ये आजकल घर का खाना कम और बाजार का भी खा रहा बता देती हूँ।
3: खाना तो मैं भी बाहर ही जाता हूँ।
2: अच्छा अच्छा वैसे पकाना तो मैं भी नहीं चाहती, बाहर से ले
3: आऊंगी। मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा। मानव एक बात तो तय है कि घर का खाना ही शरीर को स्वस्थ रखता है, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा। वसुधा मेरा लंच
2: किचन में रखा है। सृष्टि जा तो बेटा लंच लेकर आ पापा का।
3: अच्छा विवेक तुरंत चलते हैं।
1: जी जी
3: ओके वसुधा मिल हम चलते हैं।
2: देखा तो मानव कौन आया बेटा?
0: अच्छा मम्मी शायद विवेक भैया होंगे। मम्मी दीदी विवेक भैया के साथ राजीव अंकल भी है। नमस्ते भाई
4: साहब,
2: नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है। भाभी जी विवेक बता रहा था कि आप भी ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं।
2: हाँ भाई साहब क्या करें आजकल पानी की बड़ी किल्लत हो गई है।
4: और क्या है भाभी जी, अपना शहर ही नहीं बल्कि इस समय तो देश के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
0: लेकिन अंकल हमारे देश में तो इतनी नदियाँ

0: तालाब झीले हैं, फिर भी पानी की समस्या क्यों है?
1: देखो बेटे, गर्मी के आते आते अधिकतर नदियों, तालाबों जैसे सतही जल स्रोतों में पानी सूख जाता है।
0: हाँ अंकल, गर्मियों में तो पानी के लिए ट्यूबवेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि घर पर जब ट्यूबवेल लग जाएगा तो पानी की चिंता ही नहीं रहेगी।
1: हाँ वो तो है भाभी जी, घर पर ट्यूबवेल होने से जब चाहे तब पानी भर सकते हैं।
2: अगर पानी निकल आए तो।
0: निकलेगा क्यों नहीं, जमीन के नीचे सब जगह पानी ही तो है।
1: देखो बेटे, नलकूप में पानी निकलना उस स्थान के भूजल स्तर पर निर्भर करता है, और आज लगभग सभी जगहों पर भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
0: बच्चों तुम अंकल से बातें करो, तब तक मैं तुम लोग के लिए ठंडा लेकर आती हूँ, ठीक है?
3: ठीक है मामा।
0: अंकल हमारे इलाके में तो भूजल स्तर अच्छा ही होगा ना?
2: मानव तुझे पता नहीं, अपने चौराहे वाली नलकूप में पानी का स्तर कम हो गया है।
0: क्या जल स्तर कम हो गया है? धरती में तो बहुत जल है, फिर धरती से ये जल कम कैसे हो गया? धरती के समस्त जल की मात्रा का 0.78% भाग भूगर्भ जल के रूप में है।
1: हाँ, भूगर्भ जल की मात्रा पृथ्वी की समस्त जल राशि का 1% से भी कम है।
2: और पृथ्वी पर भूगर्भ जल का स्तर सभी जगह समान नहीं है।
0: तो क्या जमीन में नीचे सब जगह पानी नहीं है?
2: मानव, किसी भी स्थान पर भूगर्भ जल का स्तर इस तथ्य पर निर्भर है कि उस स्थान की संरचना कैसी है।
1: हाँ मानव, भू जल स्तर उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के प्रकार व मिट्टी पर निर्भर करता है।
0: तो मिट्टी की अधिक जल धारण की प्रवृत्ति भू जल स्तर को बढ़ाती है ना अंकल?
1: हाँ बेटी, मिट्टी की नमी धारण की क्षमता जितनी अधिक होगी वहाँ भूमिगत जल स्तर उतना ही अच्छा होगा।
0: अच्छा, तो भूमिगत जल का स्तर किसी जगह की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है।
2: बिल्कुल ठीक मानव, साथ ही उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर भी।
0: मतलब भैया, अच्छी वर्षा होगी तो भूजल स्तर भी बढ़ेगा, पर तब जब बारिश का पानी वहीं पर रोक ना लिया जाए, है ना?
2: बिल्कुल ठीक।
0: फिर तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ तो भूगर्भ जल स्तर बहुत कम होगा।
1: हाँ मानव, लेकिन रेगिस्तानों में भी कहीं कहीं भूमिगत जल मिलता है जो कहीं कहीं सतह पर जलाशय का निर्माण भी करता है। ऐसे क्षेत्र नखलिस्तान या ओएसिस कहलाते हैं।
0: अंकल हमारे देश में तो वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है, कहीं तो बहुत वर्षा होती है और कहीं बहुत कम।
1: हाँ बेटी, ये सही है कि भारत में सभी जगह समान वर्षा नहीं होती।
2: और अंकल, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ भी तो भूमिगत जल स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश का कितना पानी धरती में पहुँचा।
1: हाँ बात तो सही है।
0: अच्छा, तो बारिश का जितना अधिक पानी धरती में रिस कर पहुँचेगा भूमिगत जल स्तर उतना ही बढ़ेगा। सही समझे मानो तुम?
4: अरे बच्चों, अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो तुम लोग?
1: अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
4: अरे भाई साहब, इनकी तो आदत ही है बातें करने की।
0: और मम्मी की आदत है हमारे खाने पीने का ख्याल रखने की।
4: और आज सभी के लिए मैंने सत्तू का शरबत बनाया है।
0: सत्तू का शरबत? मम्मी मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है, क्या वो मिलेगा?
2: मानव तुम्हें तो सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड के अलावा कुछ और पसंद भी है।
1: भाई मानव, ये सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड इसकी आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है भाई।
4: सही कहा भाई साहब आपने, फास्ट फूड से शरीर का संतुलित विकास भी कहाँ हो पाता है।
0: मानव को ये बात समझ ही लेनी चाहिए।
2: अंकल मानव तो एक दिन समझ ही जाएगा। आप ये बताइए हमारे यहाँ ट्यूबवेल कब लग रहा है?
1: भाई विवेक, अभी 10 दिन तो हमारी बोरवेल मशीन फ्री नहीं है। हाँ उसके बाद तुम्हारा ट्यूबवेल जरूर लग जाएगा।
0: 10 दिन बाद?
1: हाँ?
0: अंकल तो क्या आपकी बोर मशीन पहले से ही बुक है?
1: भाई मानव, गर्मी के दिन आते आते ही ट्यूबवेल लगवाने वालों की संख्या बढ़ जाती है।
0: और करे भी क्या, पानी तो सभी को चाहिए ही।
4: हाँ? हाँ, नहीं तो क्या, जब सतही जल स्रोत सूख जाते हैं तो सभी भूमिगत जल स्रोत पर आश्रित हो जाते हैं।
2: और अंकल, अकेले हमारे देश में ही ट्यूबवेलों की संख्या का आंकड़ा लाखों में है।
0: इतने ट्यूबवेलों से तो धरती का सीना छन्नी छन्नी हो गया होगा।
1: हाँ, और फिर पानी तो सभी को चाहिए, है ना? बच्चों, जब सतही जल स्रोत से पर्याप्त और शुद्ध जल पानी नहीं मिलेगा तो मानव कहाँ जाएगा?
0: अंकल मानव कहीं नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा और 4 बाल्टियों से ही नहाता रहेगा।
2: फिर पीछे पड़ गई उसके। राजीव अंकल अपने मानव की नहीं बल्कि सभी मानवों यानी इंसानों की बात कर रहे हैं ना?
1: बिल्कुल ठीक विवेक, मेरे कहने का मतलब यही था।
4: अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कि ट्यूबवेल में करीब कितना पैसा खर्चा होगा?
2: अंकल वरुण के यहाँ जो हुआ उसके आसपास ही पैसा खर्च होगा, है ना?
1: शायद आपके यहाँ खर्च कुछ अधिक आया।
0: क्यों अंकल?
1: बेटे इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटे, मैंने इस साल जितने भी नलकूप लगाए हैं सब में करीब 400 फीट से नीचे ही ठीक ठीक पानी निकला है।
0: 400 फीट नीचे?
1: हाँ, और ये जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है।
0: लेकिन अंकल, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भूगर्भ जल स्तर इतना कम क्यों होता जा रहा है।
1: देखो बेटे, अब जमीन से भूजल निकालने की मात्रा प्राकृतिक रिसाव से अधिक हो गई है।
0: अंकल, ये प्राकृतिक रिसाव क्या होता है?
2: अंकल आप ही समझा दीजिए।
1: मानो लाखों करोड़ों वर्षों से बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता रहा है।
2: अंकल, लाखों वर्ष पूर्व जमीन में उतरा पानी फॉसिल वाटर यानी जीवाश्म जल कहलाता है ना?
1: हाँ, बारिश या अन्य स्रोतों से पानी धरती की सतह से जमीन में रिसता रहता है। ये पानी जमीन के अंदर उपस्थित चट्टानों के बीच के रिक्त स्थान में जमा होता रहता है।
2: और मानव यही कहानी भूजल निर्माण की है, समझे?
0: तब तो अब धरती के अंदर पानी ही पानी हो गया होगा।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मानव। इन चट्टानों में पानी को धारण करने की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, पर जब इन चट्टानों के बीच की जगह पानी से लबालब भर जाती है तो पानी का ये स्तर उस स्थान का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर कहलाता है।
0: तो अंकल, इन दिनों भूजल स्तर की क्या हालत है?
1: मानव, इस समय भूगर्भ जल के स्तर में भारी कमी आ रही है।
2: और जानते हो मानव, दक्षिण भारत में तो प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर में 25 फीट की गिरावट हो रही है।
0: लेकिन हमारे देश में तो पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, फिर भी भूमिगत जल स्तर बढ़ता क्यों नहीं?
2: मानव, पर्याप्त बारिश वाले क्षेत्र ही नहीं बल्कि जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उन इलाकों में भी भूजल स्तर में कमी देखी गई है।
0: ऐसा क्यों?
1: बेटे, केवल अच्छी बारिश होने से ही भूमिगत जल नहीं बढ़ता।
4: हाँ, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए जल की पर्याप्त मात्रा धरती के भीतर पहुंचनी भी चाहिए।
2: और ये तभी संभव है कि बारिश के पानी को बहने ना दिया जाए, उसे वहीं रोक लिया जाए जहाँ पानी बरसता है।
0: और इसके लिए धरती पर पर्याप्त हरियाली का होना भी आवश्यक है। तो क्या पहले प्राकृतिक हिसाब से भूमि में जल की पर्याप्त मात्रा पहुंचती थी?
2: बिल्कुल मानव, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल अधिक थे,
1: और अब तो हरियाली का नाम ही कहाँ बचा है। जहाँ देखो वहाँ कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं।
0: कंक्रीट के जंगल?
4: अरे मानव, राजीव अंकल सीमेंट रेत से बने सड़कों मकानों की बात कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन कंक्रीट के जंगल से भूमि का जल का क्या संबंध?
1: देखो बेटे, सीमेंटीकरण से धरती पर गिरने वाली बारिश का पानी जमीन में नहीं रिस पाता,
0: और इस प्रकार बारिश का अधिकतर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो क्या हुआ, ये पानी नदियों, नालों और तालाबों में तो पहुंचता ही है।
2: मानव, वर्षा का पानी सीधे नदियों, नालों और तालाबों में अकेले नहीं पहुंचता, वो अपने साथ मिट्टी की बहुत सी मात्रा जल स्रोतों में जमा कर देता है, समझे?
4: मिट्टी की अधिक मात्रा से सतही जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है, जिसके कारण ही अधिकतर जल स्रोतों में पानी नहीं जमा हो पाता, और होता भी है तो बहुत कम।
1: हाँ, पहले तो झीलों, तालाबों में जमा पानी रिसकर धरती में समाता रहता था।
0: अच्छा, तो यही कारण है कि पुराने समय में भूमि का जल स्तर अच्छा था।
4: अब से करीब 30-40 साल पहले मानव नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों में कुछ ही फीट खोदने पर जमीन से पानी निकल आता था, मालूम है?
1: और अब तो सैकड़ों फीट खोदने पर भी पानी का अता पता नहीं होता।
2: अंकल, हमारे देश के कई राज्यों में भूमिगत जल का स्तर सैकड़ों फीट नीचे उतर गया है।
1: और ऐसा मानव के कारण ही हुआ है।
0: मेरे कारण? मैंने क्या किया? वो बाल्टी पानी से नहाता है और पूछता है मैंने क्या किया।
3: सृष्टि फिर से
0: मुझे बेवजह बदनाम कर रही है।
4: बेटा, सृष्टि तुझे बदनाम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो तो सब मजाक कर रही है।
2: और मानव, राजीव अंकल का मतलब तुझसे नहीं बल्कि सारे समाज से है।
0: अच्छा, अब मैं समझा कि हमारा भूमि का जल स्तर निरंतर कम क्यों होता जा रहा है। हमने जंगलों को नष्ट कर कंक्रीट के जंगल बनाने के साथ ही प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ा है। क्यों भैया, ठीक कहा ना मैंने?
2: बिल्कुल ठीक कहा मानव।
4: और मानव, अनियंत्रित विकास से अब तक तो सतही जल स्रोतों को ही खतरा था, लेकिन अब तो भूमिगत जल स्तर पर भी खतरा मंडरा रहा है।
0: गिरते भूगर्भ जल स्तर से तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि अब भूजल स्रोत भी मानवीय स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएगा।
1: मानव अपनी बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का भरपूर दोहन कर रहा है।
2: अंकल, मैंने सुना है अकेले यूरोप में 80% पेयजल की आपूर्ति भूजल से ही होती है।
1: हाँ, तो बच्चों में क्या बता रहा था कि भूमिगत जल का दोहन समय के साथ साथ बढ़ रहा है।
2: हाँ अंकल, विकासशील देशों में तो कुल जल की 80-85% मात्रा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है।
0: अंकल, इसमें भूजल की मात्रा कितनी होती है?
1: बेटे, अकेले भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जल की आधी से अधिक मात्रा भूजल की होती है।
4: और हाँ बच्चों, विभिन्न कृषि फसलों में जल की खपत भी अलग अलग है।
1: और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में बोई जाने वाली गन्ने की फसल है, जो कुल भूमि के 2.5% भाग पर बोई जाती है, लेकिन इसके लिए कुल पानी का 60% भाग खप जाता है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब चीनी की मिठास में पानी की बहुत मात्रा खप जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हो, जो तुम्हें ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है ना, उसकी एक छोटी बोतल के निर्माण में भी करीब 3-4 लीटर पानी लग जाता है।
0: अच्छा भैया, सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल के पीछे 30 बोतल बराबर पानी लग जाता है।
2: सृष्टि,
1: इतना ही नहीं, उद्योगों में कृषि में प्रयुक्त रसायनों से सतही जल के साथ ही अब तो भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
4: ठीक कहा भाई साहब आपने, तभी तो कभी कभी हमारे यहाँ नल में आने वाला पानी बदबूदार होता है।
0: अंकल, हमारे यहाँ लगने वाले ट्यूबवेल में तो साफ पानी आएगा ना?
1: हाँ, साफ पानी निकालने के लिए हमें धरती की अधिक गहराई से पानी निकालना होगा।
4: क्या भाई साहब, अधिक गहराई पर भूगर्भ जल क्या शुद्ध होता है?
1: हाँ, भूगर्भ की ऊपर जल की तुलना में अधिक गहराई का जल अधिक स्वच्छ होता है।
4: भाई साहब, लगता है आप हमारी ट्यूबवेल का बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
2: वैसे भी अंकल, अब तो कई जगह जो भूमिगत जल उपयोग किया जा रहा है वो तो हजारों लाखों वर्ष पुराना फॉसिल ग्राउंड वाटर है।
0: तो इसका मतलब हम धरती के जल भंडार को तीव्र गति से खाली कर रहे हैं।
2: मानव यही नहीं, भूजल के दोहन के साथ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
1: हाँ मानव, जिस प्रकार से भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भूमिगत जल भंडार खत्म होने में अधिक वर्ष नहीं लगेंगे।
4: सही कहा भाई साहब आपने, हमारे देश के अनेक भागों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे रसायनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
2: और मम्मी, इस अशुद्ध जल के सेवन से करोड़ों लोग बीमारी का शिकार भी तो हो रहे हैं।
0: भैया, तो आदमी शुद्ध जल कहाँ से लाए? अधिकतर सतही जल तो प्रदूषित हो ही चुका है और अब तो भूमिगत जल भी शुद्ध नहीं रहा।
4: हाँ मानव, कभी अमृत समझे जाने वाला गंगा यमुना नदियों का ये जल पहले ही प्रदूषित हो चुका था, अब तो भूजल भी प्रदूषित हो गया है।
1: हाँ, भाई भाभी जी, पानी की बातें करते करते आप तो मुझे पानी पिलाना ही भूल गई।
4: मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, ठीक है?
0: हाँ। मम्मी, हम सबके लिए भी लेते आना।
4: भला सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला मानव नींबू पानी कब से पसंद करने लग गया?
0: आज सही दीदी, कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
1: परंपरागत शीतल पेय बाजार के सॉफ्ट ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है।
2: और अंकल, भारत में तो जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन समय से ही है, फिर भी भारत जैसे देश में पानी की समस्या गहरा रही है।
1: हाँ विवेक, हमारे देश में तो वर्षा जल संग्रहण की कई प्रणालियां प्रचलित थी, लेकिन विकास के नाम पर जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियों की उपेक्षा से जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: अंकल, हमारे देश के राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में तो वर्षा की बूंद बूंद को सहेजने की प्रथा थी।
4: शायद तभी बूंद बूंद जल से घड़ा भरने की कहावत बनी। लीजिए भाई साहब।
1: थैंक यू बाबू जी,
4: लो
1: बेटा, बहुत जरूरत थी इसे।
0: मम्मी, प्राचीन भारत के लोग जल की बूंद बूंद का बड़ी कुशलता से उपयोग किया करते।
1: बेटी, वर्तमान में भी हमारे देश में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने पारंपरिक जल प्रणालियों को पुनः जीवित किया है।
0: अंकल, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी तो वर्षा जल संग्रहण के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणाली है ना? हमारे स्कूल में भी ऐसा ही किया जा रहा है।
1: हाँ बेटे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में सरकारी और निजी भवनों की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संग्रह कर पाइपों द्वारा सीधे जमीन में उतारा जाता है।
0: मम्मी, तब तो हमें भी अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवा ही लेनी चाहिए।
4: क्यों नहीं बेटा, भूमिगत जल स्तर में हमें भी तो अपना योगदान देना चाहिए।
1: हाँ भाभी जी, यदि भूमिगत व सतही जल दोनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो काफी हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है।
2: आज हम जितना पानी बचाएंगे कल वही पानी हमारे काम आएगा।
0: मतलब अब हमें भी पानी की गुल्लक बनानी पड़ेगी।
2: हाँ मानव, लेकिन हमारी पानी की गुल्लक ऐसी होगी जिसमें कोई भी पानी जमा कर सकेगा।
0: हमारे परंपरागत तालाब, कुएं, कुंडी, पोखरे, जोहर, झीलें भी कुछ ऐसी गुल्लकें थी जिनमें हम भूमिगत जल को सहेज कर रखते थे।
1: देख कहा सृष्टि तुमने, और आज इन जल संचयन प्रणालियों को आधुनिक तकनीक द्वारा और भी कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है।
2: हाँ अंकल, गहराते जल संकट से निपटने के लिए हमें जल संग्रहण के तमाम तरीकों को अपनाना होगा।
0: मैं एक अच्छा तरीका बताऊँ भूजल स्तर को सुरक्षित रखने का?
1: हाँ
0: दीदी बताओ ना। मम्मी, मानव यदि नहाने के लिए दो के बजाय एक बाल्टी से ही काम चला ले तो भी जल की बहुत सी मात्रा सुरक्षित रह सकती है।
4: ये तो सही कहा सृष्टि तुमने, लेकिन तुम हमेशा मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो?
2: पर मानव, तुम्हारा क्या कहना है?
0: भैया, मैं अब नहाने में ही नहीं बल्कि सभी कार्यों में पानी को बर्बाद करूंगा। मेरा मतलब है कि नहीं करूंगा।
1: बहुत अच्छे बेटे, बस इसी प्रकार हर इंसान जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत हो जाए तो फिर भूमिगत जल लाखों वर्षों तक जीवन को बनाए रखेगा।
2: अंकल, जब हमारा मानव जल की महत्ता समझ गया तो हमें विश्वास है कि एक दिन मानव यानी समाज भी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजना सीख लेगा।
0: भैया, मेरा उपहार कहाँ है? पिज्जा, नूडल्स,
2: मानव।

मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती का अमृत।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25

0: मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
3: बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तू दुनिया में

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्...

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी
1: सब ठीक बा
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना
1: जी दीदी जैसे रहुआ कहले रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करी नी जैसे के पानी के ड्रम कूलर फ्रिज ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम
3: और आसपास कहूं भी टायर नरिवल खाली बर्तन या कौनो भी चीज में।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना शिपना? सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
5: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर

बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा

0: हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: Solo Sharda.
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: चोरी चोरी देखे जाए पिया, गोरिया नृत्य करे थुमकिया थुमकिया।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ।

0: मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊं। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377। सीट्स आर लिमिटेड।

0: अरे अब कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है, जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।

नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। नीम का तेल लगा सकते हैं।

0: हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर

0: फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.